बिन से मोह मेरा अर तेरा, बिन से अपने तारी, संतो या बतावो कारी, जित हो में गर्भ निवारी रखाओ, सर्व भूत पार ब्रह्म कर मान्या, होवा सगल रे नारी, देखो प्रभु अपने संगे, चूके पीत परमारी, औखद नाम निर्मल जल अमृत, पाइये गुरु द्वारी, कहो नानक जिस मस्तक लिखया, तिस गुर मिले रोग बिदारी, सोरठ

मैं बैसंतर सगल दूध मैं किया, ऊंच नीच मैं जोस्त माणी, खड़कड़ माधो जिया, संतो काड़कड़ रहे आसमायो, पूर्ण पूर रहे हो सर्व मैं, जल थल रमैया आयो रघाओ, गुण निधान नान जगावे, सदगुर परम चुकायो, सर्व निवासी सदा अलेपा, सब मैं रहे आसमायो, सोरठ महला पंजवा, जाके सिमरन होए आनंदा, दिन से जन्म मरण पै दुखी, चार पदार्थ न विरंद पावे, बौर न तिस ना भुखी, जा को नाम लैत तू सुखी, सा सा त्याव ठाकुर कहो, मन तन जियरे मुखी रखाओ, सांध पावे होवे मन शीतल, अगन अंतर तुखी।

गुर गोपाल प्रसोई, जा की शरण पया सुख पाई है, बहुत दुख ना होई रहाओ। वड भागी सा संग परापत, तिन पेट दुर्मद खोई, तिन की तूर नानक दास बांछ है, जिन हर नाम हृदय परोई। सोरठ महला पंजवा, जन्म जन्म के दुख निवार, सूखा मन साधार, दर्शन पीड़ित होत निहाला, हर का नाम विचार, मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देव है, काटे जमकी फंदा रखाओ। समर्थ पुरख पूर्ण विधाते, आपे करने हारा, अपना दास हर

प्रीत में अपने हर मंदिर सुखदाई हर नाम निधान नानक जन पाया सगली इश पुजाई सोरठ महला पंजवां गुर के चरण बसे पीतर शुभ लखन प्रभ कीने हे कृपाल पूर्ण परमेश्वर नाम निधान मन चीने मेरो गुर रखवारो मीत दून चौनी दे वड़ियाई हो बानीता नीत रहाओ जी जन प्रसगल उधारे दर्शन देखन हारे गुरपूरे की अचरज वड़ियाई नानक सद बलिहारे सोरठ महला पंजवां संचन करो नाम तन निर्मल तरती अगम अपार बिलश मनोद आना सुगमानु खाए जीवो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो सरभोयत जड़ लंगो बिग संसार रघाव है कृपाल पूर्ण अविनाशी आपे की निसार पेग पेग नानक बिसानो नानक नहीं सुमार सोरठ महला पंजवां गुरपूरे अपनी कलतारी साब का उपजी दया आपे वेल वडाई कीनी कुशल खेम सा भया सतगुर पूरा मेरे नाल पार ब्रह्म जस सदा निहाल रखाओ अंतर बार थन थनंतर जल कद पेखो सोई नान गुर पायो वड पागी ते जेवड़ अवर न कोई सोरठ महला पंजवां सुख मंगल कल्याण सहज तोन प्रभु के चरण निहारिया रखन हारे राखो बार सतगुर ताप उतारिया उबरे सतगुर की सरणाई या की सेवना बिरती जाई रखाओ कर मैं सुख वार पुन सुखा प्रभ अपने पय दयाला नानक बिघन ना लागे को मेरा प्रभु वा कृपाला सोरठ महला पंजवां साधु संग पया मन उद्यम नाम रतन जस गाई मिड़गी चिंता सिमर अनंता सागर तरिया पाई हिरदे हर के चरण मसाई सुख पाया सह तुन उबजी रोगा कान मिटाई रखाओ क्या गुण तेरे आख वखाना कीमत कह न जाई नानक भगत पय अविनाशी अपना पया सखाई सोरठ महला पंजवां गए कलेश रोस अविनाश प्रभ अपने कृपा थारी आड़ पैर आराधो स्वामी पूर्ण काल हमारी हर जियो तू सुख संपत रास राख लहो पाई मेरे कौ प्रभ आगे अरदास रखाओ जो मांगो सोई सोई पाव अपने खसम परोसा कौ नान गुरपूरा पेट्यो मिट्यो सगल अंदेसा सोरठ महला पंजवां सेमर सेमर गुर सतगुर अपना अगला दुख मिटाया ताप रोग गुर बचनी

हमरी गणत न गणिया काई, अपना बिरद पछाण, हा दे राखे कर अपने, सदा सदा रंग मान, साचा साहेब सद मेहरवान, बंद पाया मेरे सतगुरपुरे, होई सर्व कल्याण, रहाओ जीओ पाए पिंड जिन साजिया, दिता पैनन खान, अपने दास की आप ऐज राखी, नानक सद कुरबान। सोरठ महला पंजवां, दुरत गवाया घर प्रव्या पे, सब संसार उबारिया, पार ब्रह्म प्र कृपा तारी, अपना बिरद समारिया, होई राजे राम की रखवाली, तूख सहज आनंद गुण गावो, मन तन दे सुखाली रखाओ। पतित उदाहरण सदगुर मेरा, मुझ का परवासा, बगसलय सर सच्चे साहेब, तुन नानक की अरदासा। सोरठ महला पंजवां, बगस्या पार ब्रह्म परमेसर, फगले रोग बेदारे, गुरपूरे की सरणी उबरे, कार्ज सगल सवारे, हर जन सिमरिया नाम आधार, ताव्यो तारिया सतगुरपूरे, अपनी कृपा तार रखाओ। सदा आनंद करे मेरे प्यारे, हर गोविंद गुर राखिया, वड्डी वड्याई नानक करते की, साच सब सद पाखिया। सोरठ महला पंजवां, भय किरपाल स्वामी मेरे, ते साचे दरबार, ता गुरताप गवाया पाई, ठांड पई संसार, अपने जी जंतिया पे रखे, जमे की हटतार, हर के चरण हृदय उरतार, सदा सदा प्रभ सिमरिगे पाई, दुख किल भे काटन हार।

गोविंद पेटे गुर गोसाई रहाओ। आया प्रभ दरबारा ता सगली मिट्टी पुकारा, लभदे अपनी पाई ता कत आवे कद जाई। ते साच न्याय नबेरा ऊहा समठा गुर समचेरा, अंतर जामी जाने बिन बोलते आ पछाने। सर्व थान को राजा ते अनहद शब्द अगाजा, तिस पै क्या चतराई मेरे नानक आप गवाई। सोरठ महला पंजवा, हिरदय नाम साय हो कर बैठे गुरु त्याय हो। गुर पूरे सत कहया सो सुख साचा लहया, अपना होयो गुर मेहरवाना आनंद सुख कल्याण मंगल स्यों। कर आए कर स्नाना रहाओ साची गुर वडियाई, ताकि कीमत कह न जाई। सिर साहा पातशाहा उर पेड़ मन ओ माहा, सगल पराजित लाथे मिल सा संत कै साथे। गुण निदान हर नामा जप पूर्ण होए कामा, गुर कीनो मुक्त द्वारा हलसट करे जयकारा। नांग पा मेरे साथे जन्म मरण पै लाथे, तोरठ महला पंजवा गुर पूरे कृपा तारी। प्रा पूरी लोच हमारी कर स्नान गृह आए, अंद मंगल सुख पाए। संतो राम नाम निस्तरिये, उठत बैठत हर हर त्याईये, आन दिन सुकृत करिये रहाओ। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोवड़ पागी पाए। कोर जन्म के किल विखनासे, हर चरणी चित लाए। उस्त करो सदा प्रवे अपने, जिन पूरी कल राखी। जी जन सब पय पवित्रा, सगुर की सच साखी। बिघन मिनासन सब दुख नासन, सदगुर नाम दृढ़ाया। खोए पाव पय सा पावन, जन नान सो कर आया। सोरठ महला पंजवा, साहिब गुनी गहेरा, कर लस्कर सब तेरा। रखवाले गुर गोपाल।

गौरी लाती संग मिला लिया मेरे करत संत साध पैसा थी कर गए लीने सरपस दीने आपे आप मिलाया कहो नानक सर्व तोग पूर्ण पूरा सदगुर पाया।

तार सगल जगत है जैसे सुबना बिनसद लगत न बार रखाओ बारू पीत बनाई राजपत रहत नहीं दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उर्जो खां गवार अजहू समझ कछ बिगड़ो नाहिन ताज ले नाम मुरार कहो नानक रिज मत साधन कहो वाख्यो तोय पुकार चोरठ महला नावा ए जग मीत ना देखियो कोई सागर जगत अपने सुख लागे हो दुख में संग न होई रहा दारा मीत पूसन बंदी सगरे तन त्यों लागे जब ही निरतन देखो नरको संग छाड़ सा भागे कहो का या मन भौरे कहो इन से उन्हों लगायो दीना नाथ सगल पै पंजन जसता को बिसरायो स्वान पूजो पयो न सुध बहु जतन मैं कीनो नानक लाज बिरद की राखो नाम तुहारो लीनो सोरठ महला नामा मान रे गयो न गुर उपदेश हां पयो जो मूड मुंडायो भगवो कीनो भेस रखाओ था छाड़ के झूठे लागो जन्म अकारथ खोयो कर पर पंज उधर निज पोखयो फस की न्याई सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया घात बिकाना उर्ज रहो बिखेन संग बौरा नाम रतन बसराना रहो चेतना चेत्य गोविंद फिरता आओ सिरानी हो नान घर बिरध पछानो उल्ले सदा परानी सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं मान थोक सुने वर पै नहीं जा कह कंचन माटी मान है रखाओ नैन दया ने उस्त जाके लोभ मोह अभमाना हर्ग सोते रहे न्यारो नाय मान अपमाना असा मनसा सगल त्याग

सागर तो बैरागी सबन वेद्या मेरी माई अंतर जोत निरंतर बाणी साचे साहिब स्यों लिवलाई आओ। असंख बैरागी कह बैराग सो बैरागी जे खसमे पावे हिरदे शब्द सदा पै रचिया गुर की कार कमावे एको चेते मनुआ ना डोले आवत वर्ज रखावे सहजे माता सदा रंग राता साचे की गुण गावे मनुआ पौन बिन सुखवासी नाव से सुख पाई जेबा नेत्र सोतर।

पौड़ी। हर सज्जन मेल प्यारे मेल पंथ दसाई, जो हर दसे मित ते सहौ बल जाई। गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम ते आई, हर सेवी प्यारा नित सेव हर सुख पाई। बलिहारी सतगुर तिस जिन सोझी पाई, सरोक महला तीजा। पंडित मैल न चुकई जे वेद पढ़े जुग चार, त्रैगुण माया मूल है विच होमे नाम सार। पंडित भूले दूजे लागे माया कै व्यापार, अंतर तसना भुख है मूर्ख भुखिया मोए गवार। सतगुर सेवे सुख पाया सच्चे शब्द विचार, अंदरों तसना भुख गई सच्चे नाए प्यार। नानक नाम रते सहजे रजे जिन्ना हर राख्या उरतार। महला तीजा मन मुखार नाम ना सेवया, दुख लगा बहुता आए। अंतर अज्ञान अंधेर है सुध न काई पाए, मन हर सहज न बीजियो भुखा के अगे खाए। नाम दान मसारिया दूजे लगा जाए, नानक गुरमुख मिले वडियाईया जे आपे मेल मिलाए। पौड़ी हर सन हर जग गावे खरी सुहावनी, जो मन तन मुखर बोले साहर पावनी। जो गुरमुख चखे साध सा त्रिवतावनी, गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी। जिस होवे आप दयाल सा सतगुरु गुरु बुलावनी। सलोक महला तीजा हस्ती सिर जो अंकस है, अहरण जो सिर दे मन तन आगे राख कै ऊबी सेव करे। क्यों गुरमुख आप निवारिये सब राश टकाले, नानक गुरमुख बुझिए जां आपे नदर करे। महला तीजा जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते परवान, नानक कुल उधारे अपना दरगे पावे मान। पौड़ी गुरमुख सखियां सिख गुरु मेलाईया, एक सेव गुर पास एक गुर कारे लाईया। जिन्ना गुर प्यारा मन चित तिना पाओ गुरु देवाईया। गुर सिखा इको प्यार गुर मिता पुता भाईया, गुर सतगुर बोलो सब गुर आख गुरु जीवाईया। सलोक महला तीजा नानक नाम ना चेतनी अज्ञानी अंधले, अवरे कर्म कमाहे जम दर बदे मारी है फिर विष्टा मह पचाहे। महला तीजा नानक सतगुर सेवे अपना सेजन सच्चे प्रवान, हर के नाए समाए रहे चूका आवन जान। पौड़ी धन संपे माया संचिए अंते दुखदाई, हर मंदर महल सुवारिये के साथ ना जाई। हरंगी तुरे नित पालिये किते काम न आई, जन लाभो चित हर नाम स्यो अंत होए सकाई। जन नानक नाम ते आया गुरमुख सुख पाई। सलोक महला तीजा बिन कर्मे नव ना पाईये पूरे कर्म पाया जाए, नानक नदर करे जे अपनी ता गुरमत मेल मिलाए। महला पहला एक दज है एक दबी है, एक ना कुत्ते खाहे एक पानी विच ओ सटी है, एक पी फिर हसन पाहे। नानक एव ना जापई किथे जाए समाहे। पौड़ी तिनका खादा पैदा माया सा पवित है, जो नाम हर राते तिनके कार मंदिर मैल सराई सा पवित है। जिनी गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए वरसाते, तिनके तुरे जीन खुरगीर सा पवित है। जिनी गुरमुख सिख साध संत चढ़ जाते, तिनके कर्म धर्म कार सा पवित है। जो बोले हर हर राम नाम हर साते, जिनके पोते पुन है से गुरमुख सिख गुरु पह जाते। सलोक महला तीजा नानक नावो कुत्या हलत पलत सब जाए, जब तब संजम सब हिर लया मुठी दूजे पाए। जम दर बदे मारिये बहुती मिले सजाए। महला तीजा संता नाल वैर कमाम दे दुष्टा नाल मोह प्यार, अगे पिछे सुख नहीं मर जमे वारू वार। तिशना कदे ना बुझई दुबदा होए खुआर।

ही अब बेगल कहन न जाई। हमारा परम गया पहु भागा जब राम नाम चित लागा रहाओ। बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई। बाजीगर स्वांग सकेला आपने रंग रवे अकेला। कथनी कह परम न जाई सब कथ कथ रही लुकाई। जाको गुरमुख आप बुझाई

अनमड़िया मंदल बाजे मेरे सामन कनहर गाजे बादल दिन बरखा होई जाओ तत विचारे कोई मोको मेरे ओ राम स्नेही जे मिले देश सुदेही रखाओ मिल पारस कंचन होया मुख मनसा रतन परोया ये पाओ गया परम पागा गुर पूछे मन पति आगा जल पीतर कुंभ समानिया सब राम एक कर जानिया गुर चेले है मन मानिया जन नामे तत पछानिया राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद जब हम होते तब तू नाही अब तू ही मैं नाही अनल अगम जैसे लहर मैं ओदध जल केवल जल माही माधवे क्या कहिए प्रमेयस जैसा मानेंगे होए न तैसा रहाओ नरपद एक सिंहासन सोया सुपने पया पिखारी अशतराज बिशरत दुख पाया सो गल पई हमारी राज पुयांग प्रसंग जैसे है अब कछ मर्म जनाया अनक कड़क जैसे फूल परे अब कहते कहन न आया सर्वे एक अनेक स्वामी सब कड़ भुग सोई कहे रविदास हाथ पैने रह सहजे हुए सुहोई जो हम बांधे मोह फास हम प्रेम बंधन तुम बांधे अपने शूटन को जतन करो हम शूटे तुम आराधे माधवे जान हो जैसी तैसी अब कहां करोगे ऐसी रहाओ मीन पकड़ फांक्यो और काट्यो रांध कियो बहुबानी खंड खंड कर पूजन कीनो तऊ न बिसरो पानी आपन बापे नाही किसी को पावन को हर राजा मोह पटल सब जगत व्याप्यो भगत नहीं संतापा कहे रविदास भगत एक बाडी आप ही कासु कहिए जा कारण हम तुम आराधे सो दुख अजहू सही दुलाभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब वेके अराजे इंदर समसर्गृ आसन बेनहर भगत कहो के लेख ना विचारो राजा राम को रस जे रस अनस बिसर जाही रहाओ जान अजान पै हम बावर सोच असोच दिवस जाही इंद्री सबल निबर विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं सहित आन अचरित अनकश समझना परे अपर माया।

पीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बिचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, रहाओ राखो कंध उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीमा, बंके बाल पाग सिर डेरी, यो तन हुए को पसम की ठेरी, ऊंचे मंदर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी गारी, मेरी जात कमीनी पांत कमीनी, ऊंचा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद, कहे रविदास तुम्हारा, चमरटा गांठ न जनई।

की सेवा सो करे जाको नदर करे तुझ बाज प्यारे केवरहा सावड़े आई देह जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नाही कोए जिस आगे प्यारे जाए कहां रहाओ सेवी सावे अपना अवर न जाचों कोए नानक ताका दास है बिंद बिंद चुख चुख होए साहिब तेरे नाम विटो बिंद बिंद चुख चुख।

सास मास तब जियो तुम्हारा तुम्हें करा प्यारा। नानक साहिब एव कहत है सच्चे परवदगारा, जे तू किसे ना देही मेरे साहिबा क्या को कड्डे गहना। नानक बिन वै सोख छिपाई है पुरब लिखे का लहना, नाम खसम का चितन किया कपटी कपट कमाना। जाम द्वार जा पड़ चलाया ता चलदा पछताना, जब लग दुनिया रही गई नानक किस सुनिए किस कहिए। पाल रहे हम रहन न पाया जीव ते हम मर रही है। तनासरी मोहल्ला पहला कर दूजा एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए। तप हे आओ जीड़ा बिल लाए फिर जसवारे साचा सोए, तिस विसरिया चंगा क्यों होए। हिकमत हुक्म न पाया जाए क्यों कर साथ मिलो मेरी माए। रखाओ वखर नाम देखण कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए। लोग बतीने ना पत होए ता पत रहे आराखे जा सोए। जै देखा तै रहा समाए तुद बिन दूजी ना ही जाए। जे को करे कीते क्या होए जिसनु बगसे साचा सोए। हुण उठ चलना मोत के ताल क्या मोह दिसा गुण नहीं नाल। जैसी नदर करे तैसा होए बिन नदरी नानक नहीं कोए। तनासरी मोहल्ला तीजा नदर करे ता सिमरिया जाए। आत्मा द्रवे रहे लिवलाए आत्मा प्रात्मा एको करे अंतर की दुबदा अंतर मरे। गुर प्रसादी पाया जाए हर सुचित लागे तिर काल ना खाए। रहाओ सच सिमरिया होवे प्रगास ताते बिखिया महे उदास। सतगुर की ऐसी वड्याई पुत्र कलतर विचे गद पाई। ऐसी सेक सेवा करे जिसका जीव तुझ आगे तरे। साहिब पावे सो परवान सो सेवक दरगे पावे मान। सतगुर की मूर्त हृदय वसाए जो इच्छा सोई फल पाए। साचा साहिब कृपा करे

आप मुक्त अवरा मुक्त करावे, हर नाम जपे हर ते सुख पावे, बिन सतगुर सब मोई बिरलाए, अन दिन दाजे सांत ना पाए, सतगुर मिले सब त्रिशन बुझाए, नानक नाम सांत सुख पाए, तना श्री महला तीजा, सदा तन अंतर नाम समाले, जी जंत जिने प्रद पाले, मुक्त पदार्थ तिन को पाए, हर कई नाम रते लिवलाए, गुर सेवा ते हर नाम तन पावे, अंतर प्रगा

आग साच रते अहे निस बैराग क्यों जुग में अमृत साची बाणी पूरे पाग हर नाम सुमाणी सिद्ध साधक तरसे सब लोए पूरे पाग प्राप्त होए सबके साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए सच साचा सच आप दृढ़ाए नानक आपे वेखे आपे सच लाए तनासरी महला तीजा नावे की कीमत मित कही न जाए से जन तन जिन एक नाम लिवलाए गुरमत साची साचा विचार आपे बगसे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ हम मूर्ख मूर्ख मन माहे होमे विच सवकार कुमाहे गुर प्रसादी होमे जाए आपे बगसे लए मिलाए बिखिया का धन बहुत अभमान अहंकार डूबे ना पावे मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमत साला ही सच सोई आपे साजे करता सोए तिस बिन दूजा अवर न कोए जिस सच लाए सुई लागे नानक नाम सदा सुख आगे राग तनासरी महला तीजा कार चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम भीखक पेखारी तेरे तू निज पत है दाता हो दयाल नाम दियो मंगत जन कौ।

ऐसी बगस करीजे पंत नानक परम पड़ खूले गुर प्रसादी जाने साची लिव लागी है पीतर सदगुर स्यों मन मानिया।

सखाई तनासरी महला चौथा हार पढ़ हार लेख हार जप हर गाओ हर पौजल पार उतारी मन भजन हृदय त्याय हर होए संतुष्ट एव पान हर नाम मुरारी मन जपिए हर जगदीश मेरे संगत साधु मीत सदा आनंद होवे दिन राती हर कीर्त कर बनवारी हरहाओ हर हर करी दृष्टता पयो मन उद्यम हर हर नाम जप्यो गल पई हमारी जन नानक की पत राख मेरे स्वामी हर आए पर्यो है शरण तुम्हारी तनासरी महला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध ते तीस कोट मुन जन सब चाह है हर जीव तेरो नाओ गुर प्रसाद को विरला पावे जिन को रिला लिखिया तुर पाओ जप मन आरामे नाम हर उत्तम काम जो गावे सुने तेरा जस स्वामी औतर के सद बलिहारे जाओ रघाओ शरणागत प्रतपालक हर स्वामी।

जिन जल सुखेत बढ़ायो कमल हेत बिन सुखे पवरा उन मार्ग निकस न पायो। आप मान एक स्यो मोकीना मरे न जावे सदगी संगे सदगुर सबदी चीना रहाओ। काम हित कुंतर लै फांकेओ।

बहुनारी पारग्रे जो ना चूके दिन प्रत करे करे पछतापे सोग लोभ मैं सूके हर हर नाम अपार अमूला अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन कह नानक गुर ते जाना तना श्री मोहल्ला पंजवा लवे न लागन कौ है कछुए जा को फिर ओ तावे जा को गुर दीनो यो अमृत तेसी कौ बने आवे जा को आयो एक रसा खान पान आ नहीं खुदया ताके चितना बसा रहाओ मौल्यो मन तन होयो हरिया एक बूंद जिन पाई बरन न साको उष्टता की कीमत कहन ना जाई काल न मिलियो सेव न मिलियो मिलियो आए अचिंता जाको दया करी मेरे ठाकुर इन गुरे को मानो मनता दीन दयाल सदा कृपाला सर्व जिया प्रदपाला ओत पोत नानक संग रविया यो माता बाल गोपाला तनासरी महला पंजवा बार जाओ गुर अपने ऊपर जिन घर घर नाम दृढ़ाया मां उद्यान अंधकार में जिन सीधा मार्ग दिखाया हमरे प्राण गोपाल गोविंद ईगा ऊगा सर्व थोग की जिसे हमारी चिंद रहाओ जाके सिमरन तर्ब निधाना मान महत पद पूरी नाम लैद कोड अगना से भक्त बाचे सब तूरी सर्व मनोरथ जे को चाहे सेव एक निधाना पार ब्रह्म अपरम पर स्वामी सिमरद पार पराना शीतल सांत मां सुख पाया संत संग रहे ओला हर तन संचन हर नाम पूजन यो नारग कीनो चोला तनास

अखंड हो अनकबीरी समझाव हो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखाव हो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम्हें सज्जन सुहेल।

आद अंत दयाल पूर्ण तिस बिना नहीं कोए, जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोए, वेद सिमरत कथय सासत भगत करे विचार, मुक्त पाईगे साध संगत बिरस जाए अंधार, चरण कमल आधार जन का राज पूंजी एक, तान मान दीवान साचा नानक की प्रवटेक, तनाश्री महला पंजवा, फिरत फिरत पेटे जन साधु पूरे गुर समझाया, आन सगल विद काम न आवे हर हर नाम ते आया, ताते मोय तारी ओड गोपाल, शरण परयो पूर्ण परमेश्वर बिनसे सगल जंजाल, रहाव सुर्ग मृत पयाल भू मंडल सगल व्यापे माए, जी उदाहरण सब कुल तारन हर हर नाम ते आए, नानक नाम निरंजन गाइए पाइगे सर्ब निधा।

पलो हर मंगना, देखो पसार नयन, सुनो साधु के बयन, प्राण पद चित राख सगल है मरना रहाओ, चंदन चो अरस पोग करत अनेक, बिखिया विकार दिग सगल है फीके, एक कै गोविंद को नाम नीको, कहत है साध जान, तान तन अपन थाप्यो, हार जप न निमुख जाप्यो, अर्थ द्रव देख कछ संग ना ही चलना, या कोरे कर्म पला तिन ओढ़ गई संत पल्ला, तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना, पायो रे परमन धान मिट्यो है अवमान, एक निरंकार नानक मन लगना, तनासरी महला पंजवा कर सतवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, कल कलेश लो मोह मा पौजल तारे रहाओ, सास सास निमख निमख दिस रैन चितारे, साध संग जपन संग मन निधान तारे, चरण कमल नमस्कार पुन गोविंद बिचारे, साजना की रेन नानक मंगल सुख सुधारे, तनासरी महला पंजवा कर अठवा, दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सिमरो सिमर सिमर सुख पाव, सास सास माले, हे लोक परलोक संग सगाई, जद कदम होए रखवाले, गुर का बचन बसे जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, पाए ना साके जाले, रहाओ निर्तन कौ तन अंधले कौ टेक, मार दूध जैसे बाले, सागर मैं भोज पायो हर नानक, करी कृपा कृपाले, तनाश्री महला पंजवा, पय कृपाल दयाल गोविंदा, अमृत हृदय संचाई, नाम निध रिद सिद्ध, हर लागर ही जन पाई, संतन को आनंद सगल ही जाई, गृह बाहर ठाकुर भगतन का, हरावर या सर्वठाई रखाओ, ताको कोई ना पहुँच नकारा, जाके आंग कुसवाई, जमकी त्रास मिटे जिस सिमरत, नानक नाम त्याई, तनासरी महला पंजवा, दर्भवंत दर्भ देख गर्भ, पूमवंत अभमानी, राजा जाने सगल राज हमारा, त्यो हर जन टेक स्वामी, जे को अपने ओट समारे, जैसा बित तैसा होए वर्त, अपना बल नहीं हारे, रहाओ आन त्याग पै इक आसर, शरण शरण कर आए, संत अनुग्रह पै बन निर्मल, नानक हर गुण गाए, तनासरी महला पंजवा, जाको हारंग लागो इस जुग में, तो कई तगै सूरा, आत्म जिने सगल वस्ता के, जाका सदगुर पूरा, ठाकुर गाई गे आत्म रंग।

गए प्रव्यापने सुख पायो दिन रात तनासरी महला पंजवा पर हरना लोभ चूड़ निंद ए भी करत गुदारी मृत्युन आस मिथ्या मीठी ए टेक मने साधारी सागत की आवरदा जाए बिरतारी जैसे कागद के पार मूसा टूक गवाव काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी बूढ़ अंध नान प्रकाड साध जना संगारी तनासरी महला पंजवा सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म मोरे जाती रसना राम रसायन माती रंग रंगी

जन राम नाम रंग जागा, आस शीज गया सब तन ते प्रीतम स्यों मन लागा। राव जय जय पेखो तय नारायण, सगल कटा मैं तागा, नाम उदक पीवत जन नानक,

जामह रहाव सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपना निटन आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पाए उहर का ताम चरण कमल हर जन की थाती कोर सुख विश्राम गोविंद दमोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते इक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वासे संतन का संग पावो सो अगर मैं मानना व्यापे आड़ पैर गुण गाओ स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मध्यान्त प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर।

घर सेवा। चरण कमल जाका मन रापै, तोग अगन तेस जन ना व्यापै, सागर तरिया साधु संगे, निरपो नाम जपो हर रंगे, पार तन दोख के पाप ना फेड़े, जम जंदार ना आवे नेड़े, तृष्णा अगन प्रव्याप बुझाई, नानक उदरे प्रभ सरणाई, तन्हा श्री महला पंजवां। तृप्त भई सज भोजन खाया, मन तरसना नाम ते आया, जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रखाओ, अनक प्रकारी बस्तर ओढ़ाए, अनदन कीर्तन हर गुण गाए, हस्ती रथ आस असवारी, हर का

साधो यो जग परम भोलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया माया हाथ बिकाना रहाओ। मात पिता भाई सुध बनता।

तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ, दस पुरब सदा दसारा, औ नाम हर का सदा जाचो, दियो प्रतरणी तरा, संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच

कदे ना विसारी अनदिन सुमारी जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता यो मन तृप्त गुरमुख अमृत पीवा नदर करे ता सतगुर मेले अनदिन विवेक बुद्ध विचरे अंदर साचा नेहो पूरे सतगुरे सत्संगत मिले वडभाग ता हरस आवे जियो अनदिन रहे लिवलाए ता सहज समावे जियो सहज समावे ता हर मन पावे सदा अतीत बैरागी फलत पलत सोभा जग अंतर आराम नाम ले लागी हरख सोग दुहा ते मुक्ता जो प्रव करे सो भावे सतसंगत मिले वडभाग ता हरस आवे जियो दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोया जियो माया दुख मोया हो मेर होया मेरी मेरी कर्तव्य खावे जो प्रव दे ते चेते नाही अंत गया पछतावे तिन नावे को साथ ना चाले पुत्र कलत्तर माया तोया दूजे पाए दुख होए मन मुखो जम जोया जियो कर कृपा लियो मिलाए महल घर पाया जियो सदा रहे कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो प्रभ मन पावे ता हुक्म समावे हुक्मन सुख पाया अनदन जपत रहे दिन राती तेजे नाम त्याया नामो नाम मिली वड़ियाई नानक नाम मन पावे कर कृपा लिहु मिलाए

एक नाम निरंजनो जियो, तू दाता दातार सर्व दुख पंजनो जियो, दुख हरत करता सुखे स्वामी शरण साधु आया, संसार सागर महा बिखड़ा पल एक मह तराया, पूरे या सर्वथाई गुर ज्ञान नेत्री अंजनो, बिनवंत नांग सदा सिमरी सर्व दुख पय पंजनो, आप लिगे लड़ लाए कृपा तारिया जियो, मोए निर्गुण नीज अनाथ प्रभ अगम अपारिया जियो, दयाल सदा कृपाल स्वामी नीचता पणहारिया, जी जनसा वस तेरे तगर तेरी सारिया, आप करता आप भुगता आप सगल बीचारिया, बिनवंत नान गुण गाए जीवा हर जप जपो बनवारिया, तेरा दर्श अपार नाम अमोल जियो, नित जपे तेरे दास पुरख अतुल।

नीव खुदाई ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अदकाई जिन त्रेण थर मूंड बलाए हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्व करत हो बिरस जाए झूठी देही अरहाओ मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन से पाई पार है जोजन छद्र चले था देही गिरज ना खाई सर्व सोयन की लंका होती रावण से अदकाई कहां पयो दर बंदे हाथी खिर में पई पराई दुर्वासा से करत ठगोरी यादव ए फल पाए कृपा करी जने अपने ऊपर नाम जो हर गुण गाए तस बैरागन मोए बस कीनी पंचो का मिट नावो छत्र दोए परे अमृत सार बिख को मार कढावो पाचे भौर न आवन पावो अमृत बाणी कढ़ते उचरो आत्म को समझावो रहाओ बजर कुठार मोए है शीना कर मिनत लग पावो संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पाओ ये संसार ते तदगी छूटो जो माया नहीं लपटावो माया नाम गर्भ जोन का तेता दर्शन पाओ इत कर पड़त करे जो जान तेन पौ सगल चुकाई है तहत नाम जो बार क्या परम हो ए संजम घर पाइये मार वाड़ जैसे नीर बालह बेल बालह करहला जो कुरंक निसनाद बालह जो मेरे मन रामैया तेरा नाम रूढ़ो रूप रूढ़ो अतरंग रूढ़ो मेरो रामैया अरहाओ जो तरणी को इंद्र बालह कुसुम बा जैसे पवरला जो कोकल को अंब बालह त्यो मेरे मन रामैया चकवी को जैसे सूर बालह मान सरोवर हंसला जो तरणी को कंत बालह त्यो मेरे मन रामैया पार्ग को जैसे खीर बालह चात्रक मो जैसे जल थरा मछली को जैसे नीर बालह त्यो मेरे मन रामैया साधक सिद्ध सगल मुन चाह है बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरो नाम बालह त्यो नाम में मन बीठला पहल पुरगे पुंडरक वना ताचे हंसा सगल

किरपयो दर्शन देखे, चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, सरवन बाणी तुजस पूर राखो, मन सुमद कर करो चरण हिरदे धरो, रसन अमृत राम नाम पाखो, मेरी प्रीत गोविंद सिंह जिन कटे, मैं तो मोल महगी लई जी सटे, रहाओ सा संत बिना पाओ नहीं उपजे, पाविन भगत नहीं होए तेरी, कै रविदास एक बेनती हरस्यो, पैज राखो राजा राम मेरी, नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे, अरहाओ नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे, नाम तेरा अंबला नाम तेरो चंदनो, जपे नाम ले तुझे कोचारे, नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माए पसारे, नाम तेरे की जोत लगाई पयो उजियारो पवन सगलारे, नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अठारे सगल जूठारे, तेरो किया तुझे क्या अर्पो, नाम तेरा तुही चबर ठोलारे, दस अठा अड़सठ चारे खानी, एह वर्तन गए सगल संसारे, कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे, तनास

आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुनकर कथा नाम ले लाहा। हर हर कृपा तार गुर मिल हो, गुर मिले हर ओ महाराम। कर कीर्त जस अगम अथाहा, खिन खिन राम नाम गावाहा। मोको तार कृपा मिली गे गुरदाते, हर नानक भगत ओ महाराम। जय तसरी महला चौथा, रस रस राम रसाल सलाहा। मन राम ना पीना ले लाहा, किन किन भगत करे दिन राती। गुरमत भगत ओ महाराम, हर हर गुण गोविंद जपाहा। मन तन जीत शब्द ले लाहा, गुरमत पंच दूत बस आवे। मन तन हर ओ महाराम, नाम रतन हर नाम जपाहा। हर गुण गाय सदा ले लाहा, दीन दयाल कृपा कर माधो। हर हर नाम ओ महाराम, जप जगदीश जपो मन माहा। हर हर जगन्नाथ जग लाहा, तन तन वड्डे ठाकुर प्रा मेरे। जप नानक भगत ओ महाराम। जय तसरी महला चौथा, आपे जोगी जुत जुगा।

दूह आराधन दूह आराधन बिसरे ना काहू बेरा नाम जगत कोड़ सूर उजारा बिरसे परम अंधेरा थान थनंतर सब नहीं जाई जो दिसे सो तेरा तंत संग पावे जो नानक जिस बौर न होई है फेरा जैत सरी महला पंजवा कार चौथा दो पदे एक ओंकार सदगुर प्रसाद आव मैं सुख पायो गुर आग तजी स्यान बचिंत सारी अंग छोड़ो है त्याग रहाओ जो देखो तो सगल मोय मोहियो तो शरण परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जब छोड़ी मोहरी लाग तेरे ओ सागर पावक को जो संत फेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग जैत सरी महला पंजवा मन में सतगुर ध्यान करा त्रिड़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभु जीव मया करा रहाओ काल जल अरमा जंजाला छुड़के जमे डरा आयो दुख हरण शरण करना पत कयो चरण आसरा नाव रूप पयो सत संग पंध पार परा आप्यो पियो गातियो परमा कहो नानक अजर जरा जैत सरी महला पंजवा जा को पय गोविंद सहाई दुख सहज आनंद सगल स्यों वा को व्याध न काई रहाओ दिसे सब संग रह अलेपा न व्यापे उन माई एक रंग तत के बेते सदगुर ते बुद्ध पाई दया मया कृपा ठाकुर की से ही संत सुपाई तिनके संग नानक निस्तरी है जिन रस रस हर गुण गाई जैत सरी

नार को रंग के बेदया सनम उड़तावे पवर लोभी कुसुम्बास का मिल आप बंधावे तू संत जना कर प्रीत है देख दर्श अघावे श्लोक चितवंत चरण कमलं सास सास आराधन नय विश्रांत नाम अच्युत नानक आज पूर्ण परमेश्वर है सीतड़ा मन मजावे पलक न थी वे भारा नानक आसड़ी निभावे सदा पेखंदो सच तणी पौड़ी आसावंती आस कुसाई पूरी है मिल गोपाल गोविंद ना कबहू चूरी है त्यो दर्श मन चाओ ले जाए वे सूरिय कोय पवित्र शरीर चरना धूरी है पार ब्रह्म गुरुदेव सदा हजूरी है श्लोक रसना उच्चरंत नामं सर्वणंग सुनंत शब्द अमृत है नांग तिन सद बलिहारंग जिन्ना त्यान पार ब्राह्मण हब कूड़ा वे कम एक साई बारे नांग से ही तन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी सद बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावे प्रा मत्था हर्ज लिखे बेअंत सोह है से हत्था चरण पुनीत पवित्र चाले प्रापत्था संता संग उधार अगला दुख लत्था श्लोक पावी अदोद करण आरमण संजोग पूर्ण है गोपाल दस फेटं सफल नांग सो मुहूर्त तीव न सक्का पाए सुख मिति हु बारे नानक सावे लड़ी परवान जित मिलंदड़ो मा प्री पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई तो मूर्त पला संयोग है जित मिले गुसाई आड़ पैर हर त्याय कै मन इच्छ पुजाई वड़े पाग सत्संग होए निवलागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई श्लोक पत पुनीत गोविंद है सर्व दुख निवारण है तरण सूर भगवान है जे पंत नानक हर हर हरे छड्यो हबे आप लगड़ो चरणा पास नचड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदिया पौड़ी मेल लहो दयाल तय पय द्वारिया रख ले वो दीन दयाल प्रमत बहु हारिया भगत विशल तेरा बिरद हार पतत उधारिया तुझ बिन नाही कोय बिनो मोय सारिया कर गए लिहो दयाल सागर संसारिया श्लोक संत उदरण दयालं आसरं गोपाल कीर्तन निर्मलं संसंगेन ओट नानक परमेश्वर चंदन चंदन सरद रुत मूल न मिटई काम तीतल तीवे नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओढ़ उदरे सगल जान तुण प्रताप गोविंद निरपो पय मन तोट न आवे मूल संत्या नाम तान संत जनासु संग पाइये वड़े पुन आड़ पैर हर चाहे हार जस निरसुन श्लोक दया करणं दुखरणं उच्चरण नाम कीर्तन दया पुरख भगवान नानक लिवत न माया पाए बलंदड़ी बुल गई रखन।

अवर न कहू तानी। ऐसो अमर मिलो भगतन कहो राज रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा अमर हर जने नहीं निकटानी। निरभ हो रहे ले एक नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी। ताको तोखा कहां व्यापे जाको ओढ़ तुहारी। अरहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी। नवखंडन को राज कमावे अंत चले बोहारी। गुण निधान गुण तिन ही गाए जाको कृपा तारी। तो सुहिया तन उस जन्मा नानत बलिहारी। टोडी महला पंजवा हर दूजा चौपदे एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। तायो रे मान दहदस तायो माया मगन स्वाद लो मोयो। तिन प्रभ आप पुरायो रहाओ हर कथा हर जस साध संगत स्यो। एक मोहतन यो मन लायो बिगसो पेख रंग कसुंभ को पार गए जो हुन जायो। चरण कमल स्यो पाओ न कीनो नय सत पुरख मनायो। ताकत को तावे बो पाती क्यों तेली बल्द परमायो। नाम दान स्नान न कियो एक निमख न कीर्त गायो। नाना झूठ लाए मन तोखयो न बूझो अपनायो। पर उपकार न कबहू किए नहीं सतगुर सेव ते आयो। पंच दूत रच संगत गोष्ट मतवारो मधमायो। करो बेनती साध संगत हर भगत बछल सुन आयो। नानक पाग प्रयोहर पाछ राख लाज अपनायो। टोडी महला पनवा मानुख बिन बूझे बिरथा आया। अनक सा सीगार बो करता जो मृतक ओढ़ाया। रहाओ ताए ताए कृपन श्रम कीनो एकत्र करी गए माया। दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काजन आया। कर आ परन सवारी सेजा कामन थाट बनाया। तंग न पायो अपने परते पेख पेख दुख पाया। सारो दिन समझूरी करता तो मूसले शराया। पीत पयो बेगारी न्याई हर के कामन आया। पयो अनुग्रहो जाको प्रभ को तिस हृदय नाम साया। सा संगत कै पाछे परयो जन नानक हरस पाया। टोडी महला पंजवा कृपा निध बसो हृदय हर नीत तैसी बुद्ध करो।

साधु संगत होए प्राप्त ता प्रभ अपना लइए। सदा सदा हम शोरे तुमरे तू प्रभ हमरो मीरा। नानक बारक तुम माध पिता।

पूर्मिल परमो गवाया हे एबद पाई मैं साधु कन्हो लेख लिखियो तुर माते एबद नानक हर नैन अलोए टोडी महला पंजवा गर्भ गैलड़ो मूड़ो ही ओ रे ही ओ महराज री मायो तीघर न्याई मुए फाट्यो रे हरहाओ कणो कणो कणो सा लोड़े बिन लैने कैठे पायो रे महराज रो गाथ वाऊ सुन लुबड़ो ने पगड़ो पाए संजोयो रे सुन मन सीख सजन सगलो थारे सगले प्राशित मिट्यो रे जाको लहणो महराज री गाठड़ियो जर नान करभास ना पौड़ो रे टोडी महला पंजवा तार पंजवा दो पदे एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद ऐसो गुण मेरो प्रभु जी कीन पंच दुख और अंग रोग ए तंते सगल दूर कीन रहाओ बंधन तोर शोर बिखियाते गुर को सब मेरे ही रे दीन रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचार्यो प्रेम गयो मुए हर अंग पीन पेख्यो लालन पाड़ बीज खोय अंध चिता हरखे पतीन तेसी को ग्रसो

दय दिस रब रहा जिस तुमर अंतर जामी सदा हजूर जो तुमरा जिस गावे करते ते जन कभो ना मरते चूर तंद बंद बिन से माया के साधु संगत मिटे बसूर सुख संपत ओ इस जी के फिर हर नानक जाने कूर टोडी मुहल्ला पनवा माई मेरे मन की प्यास एक न रह न सको बिन प्रीतम दर्शन देखन को तारी मन आस रखाओ सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुखदाते अविनाशी विमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर्व मनोरथ कर कृपा फेटे गुणतास शांत सहज सुख मन उपजे कोड़ सूर नान पर।

मध्य गोविंद आचे, गोकल मध्य श्याम गो, नामे मध्य राम आचे, राम श्याम गोविंद गो। अराग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुन मन अकथ कथा हर नाम, रिद्ध बुद्ध सिस उपावे, पज गुरमत हर राम राम रहाओ। नाना ख्यान पुराण उत्तम, खड़ दर्शन गावे राम, शंकर करोड़ तेतीस ते आयो, नहीं जान्यो हर मरमाम। सुर नर गण गंधर्व जस गावे, सब गावत जेत उपाम, नानक कृपा करी हर जिन को, ते संत पले हर राम। बैराड़ी महला चौथा, मान मेल संत जना जस गायो, हर हर रतन रतन हर नीको, पुर सदगुरु दान देवायो। हरहाओ ते जन को मन तन सब देव, जिन हर घर नाम सुनायो, तन माया संपैत देव, जिन घर मीत मिलायो, खिन किंचित कृपा करी जगदीशर, तब हर घर हर जल त्यायो, जन नान कौ हर भेटे स्वामी, दुख होमे रोग गवायो। बैराड़ी महला चौथा, हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपन

जप मन राम नाम निस्तार कोट कोट अंतर के पाप सब खोवे हर पव जिल पार उतारा रखाओ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निर्भव निर्वैर निरंकारा हर निकट बस्त

तन महल न पावे, विण कर्मा किछ पाइए नाही जे वो तेरा तावे। लब लोभ अंकार की माती, माया माए समाणी, इन्नी बाती सो पाइए नाही भई कामण एयाणी। जाए पुछो सुहागणी वाहे, किन्नी बाती सो पाई है, जो कुछ करे सो भला कर मानिए, हिकमत हुक्म चुकाइए। जाके प्रेम पदार्थ पाई है, तौ चरणी चित लाइए, सौ कहे सो कीजे तन मनो दीजे, ऐसा परमल लाइए। एव कह सुहागणी पैणे, किन्नी बाती सो पाई है, आप गवाएगे ता सो पाएगे, और कैसी चतराई। सौ नदर कर देखे सो दन लेखे, कामण नौ निध पाई, अपने कंत प्यारी सा सुहागण, नानक सा सबराई। ऐसे रंग राती सहज की माती, अहे निस पाए समाणी, सुंदर साए स्वरूप चखण, कहिए सास।

बाद तब आए हो मुख समाह हुक्म सा वर्तनी सच साहेब सचा खेल सब हर तनी साल आयो सच सब ऊपर हर तनी जिस नाही कोई शरीक किस लेखे हो गनी अरहाव पौन पानी धरती आकाश कर मंदिर घर बनी विच वरत नानक आप झूठ कहो क्या गनी तिलंग महला चौथा नित निफल कर्म कमाए बफावे दुरमतिया जब आने वाल वंच कर झूठ तब जाने जग जितिया ऐसा बाजी सहसार ना चेते हर नामा खिर

मनहार अगम अघात ऊच अपार जो तो सेवै तिन पौ दुख नाहे गुर प्रसाद नानक गुण गावे जो दिसे सो तेरा रूप गुण निधान गोविंद अनूप सेमर सेमर सिमर जन सोए नानक कर्म प्राप्त होए जिन जपया तिस को बलिहार तिस के संग तरे।

अहंकार चेतना है तो चेतल है, निर्जनमय प्राणी छिन छिन औद विहात है, फूटे कर्जो पानी हराव हर गुण गए ना गाव ही, मूर्ख अज्ञाना झूठे लालच लाग कह न मरन पछाना, आजू काज बिगड़े नहीं जो प्रभु गुण गावे, कहो नानक ते भजन ते निर्भय पद पावे, तिलंग मोहल्ला नामा जाग लेहो रे मना जाग लेहो, कहां गाफल सोया जो दिन उपजिया संग ही, सो पी संग न होया रखाओ, माग पिता सुद बंद जा हित जा सो कीना, जियो छूट्यो जब देत डार अग्न मैं दीना, जीव तलो व्योहार है जको तुम जानो, नान खर गुण गाए ले सब सुफन समानो, तिलंग महला नामा हार जस रे मना गाए ले, जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है, कयो मान ले मेरो अरहाओ, संपत रतन राश्यो आत्मो लगायो, काल फास जब गल परी सब पयो परायो, जान बूझ के बावरे ते काज बिगारियो, पाप करत सुगत्यो नहीं न गर्भ निवारियो, जे बिद गुर उपदेसया

तेरा नाम है अधारा अरहाव करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी हाजरा हजूर दर पेश तू मनी दरियाओ तू देहंद तू विशियार तू तनी देह लेह एक तू दिगर को नहीं तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी नामे ते स्वामी बगसंद तू हरी हल्ले यारा खुशखबरी बाल बल जाओ हौ बल बल जाओ नीकी तेरी बेगारी आले तेरा नाओ अरहाओ कुजा आमत कुजा रवती कुजा मेरवि द्वारका नगरी रास बगोई खूब तेरी पगरी।

दुख विसारसी सहसा मूले नाहे तर पर तारसी तिना मिलिया गुर आए जिन को लिखिया अमृत हर का नाव देव दिखिया चल है सतगुर पाए पवे ना पीखिया जा को मैल हजूर दूजे निवे किस तर दरवाणी नाहे मूले पुछ तिस छुट्टे ताके बोल साहेब नदर जिस कल्ले आने आप जिस नाही दूजा मते कोए ताहे उसारे साज जाने सब सोए।

तीर्थ मल मल नहाए, तेरा सदड़ा सुनीजे पाई, जे को भय अलाए अरहाओ, जैसा भी जे सोलने जो खट्टे सो खाए, अगे पुछ न हो गई जे सण निशाने जाए, तैसो जैसा काढ़िए जैसी कार कमाए।

कामना आवै जिद तन नाही सच्चा नाव। सूही मोहल्ला पहला कार सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जोग ना खिंता जोग ना डंड है जोग ना पसम चढ़ाई है जोग ना मुंदी मूड मुड़ाय जोग ना सिंगी वाई है अंजन महे निरंजन रही है जोग जुगत एव पाई है गल्ली जोग ना होई एक दृष्ट कर समसर जाने योगी कही है सोई रहाओ जोग ना बाहर मड़ी मसानी जोग ना ताड़ी लाई है जोग ना देद संतर पवे है जोग ना तीर्थ नाई है अंजन महे निरंजन रही है जोग जुगत एव पाई है सतगुर भेटे ता सहसा टूटे धावत वर्ज रहाई है निज चरे सह तुन लागे करगी परचा पाई है।

अंजन महे निरंजन रहीय जोग जुग तिव पाईय नानक जीव त्या मर रही है ऐसा जोग कमाई है। वाजे बाजों सिंगी वाज तौ निरपहो पल पाई है अंजन महे निरंजन रही है जोग जुगत तौ पाई।

तोर लिख पाया पंच तत्कार तुद सृट सब साजी कोई सेवा करहो जे किछ कीता होवे एक ना सतगुर मेल तू बुझावे एक मनमुख करे से रोवे हर की वड्याई हो आख ना साका हो मूर्ख मुग्ध नीचाण जन नानक तौ हर बख्श लै मेरे स्वामी शरणागत पया अजान राग सूही महला पंजवां कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बाजी कर जैसे बाजी पाई नाना रूप तेर दिखलाई सा

अतीत सदाए माया का माता, मन नहीं प्रीत कहे मुख राता, कहो नानक प्रभु बिनो सुनीज, कुचल कठोर

क्रोध लोभ मोह बाधा मां गर्त मैं निगरत जाता नानक की अरदास सुनी जय दूपत पाहन प्रभ मेरे लीजे सूही महला पंजवा जीवित मरे बुझे प्रभ सोए इस जान कर्म प्राप्त होए सुन साजन यों दुत्तर तरिये मिल साधु हर नाम उच्चरिये रखाओ एक बिना दूजा नहीं जाने घट घट अंतर पार ब्रह्म पछाने जो किछ करे सोई फल माने।

करै अरदास विसर नाही पूर्ण गुणतास सूही महला पंजवां मीत साजन सुध बंद पाई जद कद पेखो हर संग सहाई जात मेरी पत मेरी तन हर नाम सूग सहज आनंद विश्राम रहाओ पार ब्रह्म जब पैर सनाहा कोड आबद तिस बेद तनाह हर चरण सरण गढ़ कोट हमार काल कंटक जम तिसना बिदार नानक दास सदा बलिहारी सेवक संत राजा राम मुरारी सूही महला पंजवां गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा आनंद विनोद मंगल।

तू मैं छड़ाए लियो जन अपना, उर्ज परयो जाल जग सुपना रहाओ, पर्वत दोख महाबिकराला, खिन मैं दूर किए दयाला, सोग रोग बिपत अद पारी, दूर पई जपना मुरारी, दृष्ट तार लीनो लड़लाए, हर चरण गए नानक सरणाए, सूही महला पंजवा, दीन छड़ाए दुनी जो लाए।

जाए, सर्व निरंतर एको जाग, जित जित लाया तित तित को लाग, अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बोलाया तेरा। सूही महला पंजवां, प्राते काल हर नाम उचारी, ईत्यूत की ओर सवारी, सदा सदा जपिए।

गुण गावत अचुत अविनाशी, ताते काटी जम की फासी, हर कृपा लीने लड़ लाए, सदा आनंद नानक गुण गाए। सूही महला पंजवा, अमृत बजन साध की बाणी, जो जो जप तिसकी गत होवे, हर हर नाम नित रसन बखानी, हरहाओ कली काल के मिटे कलेसा, एको नाम मन मह परवेसा, साधु तूर मुख मस्तक लाई, नानक उदरे हर गुर शरणाई।

कामना तौर हर जित हर बसराए रहाओ अंध गरीबी साध संग जित प्रवचित आए जल जाओ इहो बड़पना माया लपटाए पीसना पीस ओढ़ कामरी सुख मन संतोख आए ऐसो राज ना किते काज जित नहे त्रिवताए नगन फिरत रंग एक कै ओ सोभा पाए पाठ पटंबर बिरथया जे रच लोभाए सब किश तुमरे हाथ प्रभ आप करे कराए सास सा

सेवक कौ पौ किश नाही, जाम नहीं आवे नेरे, रहाओ जो तेरे रंग रते स्वामी, इनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श न मेटे कोई, सदगुर का दिलासा, नाम त्यायन सुख पर पायन, आड़ पैर आराध है, तेरी शरण तेरे परवास है, पांच दुष्टले सद है, ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जेन कल राखी मेरी, सूखी महला पंजवा, सगल त्याग गुर सरणी आया, रखो रख नगारे, जित तू लावे, तेत हम लागे।

सच्चे की लिव उबर है, बक्से बक्सन हार जियो, आनको की जे मित्रड़ा, खा कर ले मर जाए जियो, बहु रंग देख पुलाया, पुल पुलिया वे जाए जियो, नदर प्रभु ते छुटिए, नदरी मेल मिलाए जियो, गाफल ज्ञान विहूणिया, गुर बिन ज्ञान ना पाल जियो, खिंचो तान विगुचिए, बुरा भला दो नाल जियो, बिन

मनना पिजई आत्मैले चित कठोर सप्पै दुध पी आईए अंदर विस निकोर आप करे किसे आखिए आपे बख्शनहार गुरसबदी मैल उतरे ता सच बनया सी गार सच्चा सहो सच्चे वणजारे उथे कूड़े ना टिकन ओना सच ना पावई दुख ही महे पचन होमे मैला जल फिरे मरजमे वारो वार पय किरत कमावना कोई ना मेटन हार संता संगत मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सराही सच मान दर सच्चे सत्यार गुर पूरे पूरी मत है अहेरस नाम ते आए होमे मेरा बड़ रोग है विचों ठाक रहा पुरसाला ही अपना नेव नेव लागा पाए तान मन सौंपी आगे तरी विचों आप गवाए खिंचो तान विगुचिए एक स्यों लिवलाए होमे मेरा छड तू ता सच रह सुमाए सदगुरु नु मिले से पायर सच्चे शब्द लगन सच मिले से ना विछड़े दर सत्य दिसन से भाई से सजना जो सच्चा से वन अवगण वेकण पलरन गुण की सांझ करन गुण की सांझ सुख उपज सच्ची भगत करेन सच वणजै गुर शब्द स्यों लाहा नाम लैन तोयना रूपा पाप कर संचिए

सुर्ग अवतार माया तंदया सोदत सोदत सोद तत दी चारया ना बिना सुख नाहे सर पर हारया आवे जाए अनेक मर मर जन्म ते बिन बूझे सावाद जोनी परम ते जिनको पय दयाल तिन साधु संग पया अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लया खोजे कोट असंख बहुत अनंत के जिस बुझाए आ

बिन गुर गुण ना सुमावनी बलराम जियो, गुण सार न जानी परम भुलाणी, जोगन बाद गवाया वार कार दार दर्शन नहीं जाता, तिरका सहज ना पाया सदगुर पूछ ना मार्ग।

आवो सजना हौ देखा दर्शन तेरा राम कर आपनड़े खड़ी तका मैं मन चाओ कनेरा राम मन चाओ कनेरा सुन प्रा मेरा मैं तेरा परवस दर्शन देख पई ने केवल जन्म मरण दुख नासा सगली जोत जाता तू सोई मिलिया पाए सुभाए नानक साजन कौ बल जाइए साच मिले करे आए कर आएड़े साजना ता तन करी सरसी राम हार मोहेड़ी साच ठाकुर देख रहंसी राम गुण संग रहंसी खरी सरसी जा रवी रंग रत अवगुण मार गुणी कर छाया पूरे पुरख विधाते तस्कर मारवसी पंचायण अदल करे विचारे नानक राम नाम निस्तार गुरमत मिले प्यारे वार पाएड़ा बालड़िए आस्था मनसा पूरी राम तेरे रावेड़ी शब्द रली रब रहया न दूरी राम प्रा दूर न होई कड़कड़ सोई तिसकी नार सबाई आपे रसिया आपे रावे ज्यो ते दी वड्याई अमर अडोल अमोल अपारा गुरपूरे सच पाई है नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाई है फिर उचड़िए मारड़िए त्यो लोवा सिरता जा राम हौ बिसु पई देख गुणा अनहद शब्द अगा जा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो।

परम गद पाई पंच मिले सोहाया गया क्रोध ममता तननाठी पाखंड परम गवाया हौ में पीर गई सुख पाया आरोगत पय शरीरा गुरप्रसादी ब्रह्म पछाता नानक गुणी गहीरा मनमुख विछड़ी दूर महल ना पाए बल गई बलराम जियो अंतर ममता कूर कूड़ विहाजे कूड़ लई बलराम जियो कूड़ कपट कमावे महा दुख पावे वेण सतगुर मगना पाया उजड़ पंथ प्रमे गावारी खिण खिण तक्के खाया आपे दया करे प्रवदाता सदगुर पुरख मिलाए जन्म जन्म के विछड़े जन्म मेले नानक सहज सुभाए आया लगन गणाए हिरदे तन ओ माइया।

मन मजी वधाई। जब साजन सुने कर आए, गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए, वर पाया पुरख अगम अगोचर, सद नवतन बाल।

नदर प्रभु सत्संग हार मंगल रस रसन रसाय नारक नाम परगस अंतरतन विचारे गुरमुख नाम प्यारे हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया कर चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प सिगार बनाए हर प्रसवते पाया जो प्रभु कहे सोई पर कीजे नानक अंक समाया हर प्रभु काज रित्याया गुरमुख वियाहने आया वियाहने आया गुरमुख अर पाया सातन कंत प्यारी संत जना मिल मंगल गाए हर जीव आप सवारी सुर नर गण गंधर्व मिल आए अपूर्व जंज बनाई नानक प्रपाया मैं सच्चा ना कदे मरे ना जाई राग सूगी शंत महला चौथा कार तीजा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद आओ संत जनो गुण गावे गोविंद के रे राम गुरमुख मिल रही है कर वाजे शब्द कन्हेरे राम शब्द कन्हेरे घर प्रतेरे तू करता सब ताई आयन जपी सदा सालाही साज शब्द लिवलाई अनदिन सहज रह गए रंग राता राम नावृद पूजा नानक गुरमुख एक पछाण अवर न जाने दूजा सब में रव रहया हो प्रवेंत्र जमी राम गुर शब्द रवे रब रहया हो प्रमेरा स्वामी राम प्रमेरा स्वामी अंतर जामी काट काट रव्या सोई गुरमत सच पाईए सह सुमाईए तेस बिन अवर ना कोई सहजे गुण गावा जे प्रभावा आपे लय मिलाए नानक सो प्र

एक सो सदा सद जीवई बलराम जियो तेरी टेक तुझे ते पाई साचे सिरजनहारा जिते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा संत जना मिल मंगल गाया दिन रैन आस तुम्हारी सबल दर्श पेटिया गुरपूरा नानक सद बलिहारी समलिया सच थान मान महत सच पाया।

की शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा। सदा सदा प्रभु को बलिहार नानक सतगुरु बाणा। ऐसा गुरवड भागी पाई है जित मिले प्रभ जापे राम। जन्म जन्म के किलबिख उत्तर है हर संत धूड़ी नित नापे राम। हर धूड़ी नाइये प्रभु ते आई है बाहुड़ जोन ना आई है। गुर चरणी लागे प्रम पौ पागे मन चिंदिया फल पाई है। हार गुण नित गाए नाम त्याए फिर सोग

प्रीतम हर गुण सुनिए अबनासी राम। सुन सुन यो मन निर्मल होवे कटिए काल की फासी राम। कटिए जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सो ज्ञाना। हर हर जप जपिए

परम पद पाया प्रभ की उत्तम बाणी। सहज कथा प्रभ की अत मीठी कथी अकथ कहानी। पला संयोग मूर्त पल साचा आप चलनी विरखाई। जन नांग प्रापय दयाला सर्व कला बने आई। आनंदा वजे नित वाजे पार ब्रह्मन उठा राम। गुरमुखे सद करनी सारी बिन से प्रम पे झूठा राम। अनहद बाणी गुरमुख वखाणी जस सुन सुन मन तन हरिया। सर्व सुखा तिस ही बने आए जो प्रभ अपना करया। कर में नवनिध परे पंडारा।

बिनवंत नानक इश पुन्नी एक दर्शन जीजे राग सूही महला पंजवा शंत एक ओंकार सदगुर प्रसाद मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हौ सम्मल थकी जी ओ कदे ना बोले कौरा कौड़ा बोल ना जाने पूर्ण भगवान औगुण को ना चितारे पतत पावन हर बिरद सदाए एक तिल नहीं पन्ने काले काड़-काड़ वासी सर्ब निवासी नेरेगी ते नेरा नानक दास सदा शरणागत।

सच रते से निर्मले होमे तज विकार जिस तू मिले सो तुद मिले सो ईस त्यारा। श्लोक महला तीजा सूविगे सूहा सब संसार है जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में झूठ सा बिरस जाए ज्यो टेके ना बिरख की छाओ। गुरमुख लालो लाल है जो रंग मजीठ सचड़ाओ उल्टी सगत सिवे कर आई मन वसया हर अमृत नाओ। नानक बलिहारी गुर अपने जित मिले हर गुण गाओ। महला तीजा सूहा रंग विकार है तंतन पाया जाए किस लेंदे बिल मन हो वई रंड बैठी दूजे पाए। मुंद एयानी दुमनी सूहे वेस लुभाए शब्द सच्चे रंग लाल कर पाए पाए सीगार बनाए। नानक सदा सुहागणी जे चलन सतगुर पाए पौड़ी आपे आप उपायन आप कीमत पाई। सीधा अंत न जापई गुर शब्द बुझाई माया मोह गुबार है दूजे परमाई। मनमुख ठौर ना पाए नी फिर आवे जाई जोत भावे सो थीए सब चले रजाई। श्लोक महला तीजा सूहे वेस कामण कुलखणी जो प्रभ छोड़ पर पुरख तरे प्यार। ओस सील ना संजम सदा झूठ बोले मनमुख कर्मखवार जिस पूर्व होवे लिखया तेस सतगुर मिले पतार। सूहा वेस उतार तरे गल पैरे खिमा सीगार पीगे सौरे बो शोभा पाए तिस पूज करे साब सहसार। और लाई किसे दीना रले जिस रावे सिरजनहार। नानक गुरमुख सदा सुहागणी जिस अवनासी पुरख प्रतार। महला पहला सूहा रंग सुपने निसी बिरतागे गलहार। सच्चा रंग मजीठ का गुरमुख ब्रह्म विचार। नानक प्रेम महारसी सब पुरे आईया शार पौड़ी। यो जग आप्यो पायोन कर चोज विडान पंच तात विच पाइयन मोह झूठ गुमान। आवे जाए पवाइये मनमुख अज्ञान एक ना आप बुझायोन गुरमुख हर ज्ञान। भगत खजाना बख्सियोन हर नाम निधान। श्लोक महला तीजा सू विगे सूहा वेस छड तू ता तिर लगी प्यार। सूहे वेस तिर केने ना पायो मनमुख दज मुई गावार। सतगुर मिले सूहा वेस गया होमे विचो मार। मन तन रत्ता लाल हुआ रसना रत्ती गुणसार। सदा सुहागण शब्द मान पाए पाए करे सीगार। नानक करमी मैल पाया फिर राख्या उरतार। महला तीजा मुंदे सूहा पर हरो लाल करो सीगार। आवन जाना विसर गुर शब्दी विचार। मुंद सुहावी सोहनी जिकर सहज पतार। नानक सात नरावीए रावे रावण हार पौड़ी। मोह कूड़ कुटंब है मनमुख मुग्ध रत्ता। होमे मेरा कर मोए केश साथ ना लिता सिर उपर जम काल ना सुजई दूजे परमिता। फिर वेला हथ ना आवई जम काल बस किता जेहा तुर लिख पायोन से कर्म कमिता। श्लोक महला तीजा सतियां ए ना आखियन जो मड़िया लग जलन। नानक सतियां जानियन जे बिरखे चोट मरन। महला तीजा पीसो सतियां जानियन सील संतोख रहन। सेवन साई अपना

पौड़ी सच्चा अमर चलायोन कर सत फुरमान सदा निचल रब रहा सो पुरख सुजान गुर प्रसादी सेविए सच शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान आगम अगोचर अलख है गुरमखर जान श्लोक महला पहला नानक बदरा मालका पीतर तरिया आन खोटे खरे परखियन साहिब कै दीवान महला पहला नावन चले तीरथी मन खोटे तन चोर एक भाव लथी नात्या दोए पा चढ़िए सहोर बार तोती तूमड़ी अंदर विस निकोर साध पले अणनात्या

पाई, अत्यंत नाम बसया मन आई, होमे माया शब्द जलाई, दर साचे गुरते शोभा पाई, जगदीश से वो मैं अवर ना काजा, अन दिन अंध होवे मन मेरा, गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाओ, मन की प्रतीत मन ते पाई, पूरे गुरते शब्द बुझाई, जीवन मरण को समसर वेख, बौड़ ना मरे ना जम पिख, करगी मैं सब कोट निधान, सतगुर दिखाए गया अभिमान, सदगी लागा सहज ध्यान, अन दिन गावे एको नाम, इस जुग में वड्याई पाई, पूरे गुरते नाम ते आई, जय देखा तै रहा समाई, सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई, पूरे पाग गुर पूरा पाया, अंतर नाम निधान दिखाया, गुर का शब्द अत मीठा लाया, नानक त्रिशन बुझी मन तन सुख पाया।

13 बोलो पैया राम नाम पतत पावनो हर संत भगत तारनो हर भरपुर रहया जल थले राम नाम नित गाइये घर दुख बसारनो रगाओ हर किया है सबल जन्म हमारा हर जपया घर दुख बसारन हारा गुर पेटया है मुक्त दाता हर की हमारी सबल जाता मिल संगती गुण गावनो मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बिनासा वित्यासा हुई निरासी सो जन मिलया घर पासी ओई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पगलावनो राग बिलावल महला पंजवां चौक दे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद नदरी आवे ते स्यो मोह क्यों मिलिए प्रभ अवनासी तोहे कर कृपा मुई मार्ग पावो साध संगत के अंचल लाभो क्यों तरिये बिखिया संसार सतगुर बोहित पावे पार रहाओ पामन चुल्हारे माया दे हर के भगत सदा थिर से हरख सोगत रह निरारा शेर ऊपर आद गुरु रखवारा पाया वेड़ माया सर्ब पोयंग।

मुए अनाथ तुमरी शरणाई, कर कृपा कर चरण तिहाई। दया करो बसो मन आए, मुए निर्गुण लीजे लड़लाए रघाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़, हर सेवक नाही जा पीड़। सर्ब दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसै। प्रभ का नाम मंतन आधार, विस्तृत नाम होवत तनसार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज,

आप ही देवा, आपे जोग आप ही जूता, नाग के प्रभ सद ही मुक्ता। बिलावल मोहल्ला पंजवा, आप उपावन आप सधरना, आप करामन दोष न लेना, आपन बचन आप ही करना, आपन विभो आप ही चरना। अरगाओ आप ही मस्त, आप ही बोलना, आप ही अशलना जाई शलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही काट काट आप अलिपना, आप पे अवगत आप संगरचना। पहो नानक प्रभु के सब जचना। बिलावल मोहल्ला पंजवा, पूले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया। सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे। रघाव काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना। दुसो करत जन्म फुनमुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, आगन सागर बूढ़त संसारा। नानक बां पकर सदगुर निस्तारा। बिलावल मोहल्ला पंजवा, तान मन तान अर्पो सब अपना, कामन सुमत जित हर हर जपना। कर आसा आयो प्रा मांगन, तू पेखत सोभा मेरे आंगन। रखाओ आनक जुत कर बहुत बिचारो, साध संग इस मने उधारो। मत बुसुरत नहीं चतराई, ता मिल गए जान लय मिलाई। नयन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सबल सो आया। बिलावल मोहल्ला पंजवा, मात पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया। रब रहया प्रसम में आपे, हार जप रसना दुख ना व्यापे। रखाओ तिखा भूख बो तप्त व्यापया, शीतल पय हर हर जस जापया। कोट जदन संतोख न पाया, मान तृप्ताना हर गुण गाया। देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल मोहल्ला पंजवा, गुर पूरा वड भागी पाइये, मिल साधु हर नाम।

अवसर दुलभाया, अंतर्यामी आप प्रभु सब करे कराया, पद पुनीत कणे करे ठाकुर बिरदाया, मद कूलो मानुख जान माया परमाया, नानक तिस पत राखसी जो प्रभ है राया, बिलावल मोहल्ला पंजवा माटी तेजन साजया, कर दुर्लभ देखे आनक शिदर मन में टके, निर्मल दृष्टि हे क्यों बिस्तरे प्रा मने ते, जिसके गुण एहे प्राप तज रचे जे आन स्यो, सो रलिगे खे हे रघाव, सिमरो सिमरो सास सास मत बिलम करे हे, छोड़ प्रपंच प्रसुमरचो तज कूड़े नेहे, जिन अनक एक बहु रंग किए है हो सी एहे, कर सेवा तस पार ब्रह्म गुरते मत लेहे, ऊचे ते ऊचा वड्डा सब संग बरनेहे, दास दास को दासरा नानक कर लेहे, बिलावल मोहल्ला पंजवा एक टेक गोविंद की त्यागी अन आस, सब ऊपर सुमरथ प्रभ पूर्ण गुणतास, जनका नाम आधार है प्रसरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे रखाओ, आप रखे आप देवसी आपे प्रतपारे, दीन दयाल कृपा निधे सास सास संहारे, करणहार जो कर हया साई वड्याई, गुर पूरे उपदेसे आ सुख खसम रजाई, चिंत अंदेसा गणत ताज जन हुकुम पछाता, न बिरसे न छोड़ जाए,

रोग रगाओ औगद हर का नाम है जित रोग ना व्यापे साध संग मन तन हित फिर दुख ना जापे हर हर हर हर जापिए अंतर लिवलाई केल उतरे शुद्ध होए साधु शरणाई सोनत जपत हर नाम जस ताकि दूर बिलाई महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई बलावल महला पंजवां पए ते उपजे भगत प्राभ अंतर हुए शांत नाम जपत गोविंद का बिरसे परम प्रांत गुरपुरा जिसे फिटिया ताके सुख परवेश।

को नास, चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास। कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग कड़ सास रहाओ। मात पिता बंदब तू है तू सर्ब निवास, नानक प्रभ शरणागति जा को निर्मल जास। बिलावल मोहल्ला पंजवा सर्ब सिद्ध हर गा।

प्रमिट गया रविया नित राम। साध जना के संग बस्त तुग सहज विश्राम। साई कड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम रखाओ। पलट पए संसार में फिरते पए नाम। नांग ते शरणागति काट काट सब जान। बिलावल मोहल्ला पंजवां रोग मिटाया आव प्रभ। उपजया सुख शांत वड प्रताप अजज रूप। हर कीनी दात गुर गोविंद कृपा करी। रख्या मेरा भाई हम।

रोग मिटाए जीवालयन जा कावड़ प्रताप दोख हमारे बसेयन अपनी कल तारी मन बांझ तो फल दितेयन नानक बलिहारी राग बिलावल महला पंजवां चौपदे दो पदे कर छेवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मोहन सरवनी ए ना सुनाए साकत गीत नाद तुंगाव बोलत बोल अजाए रहाओ सेवत सेव सेव साध सेव सदा करो किरताए अपहे दान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए रसना अघय अघय गुण राती नयन दर सुरंग लाए हो किरपाल दीन दुख पंजन।

खोए खोए खोई हो मोको सतगुर मंत्र दरड़ाए अतुल अतुल अतुल न तुलिए भगत वशल कृपाए।

तृप्त अघाए पेह प्रदर्शन अमृत हर्ष पूजन खात चरण शरण नांग प्रतेरी कर कृपा संत संग मिलात बिलावल मोहल्ला पंजवा राख लिगी अपने जने आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिनस गए सब सोग संताप रघाओ गुण गोविंद राखो सब हर जन राग रतन रसना आलाप कोट जन्म की तिशना निवरी राम रसायन आत्म त्राप चरण गहे शरण सुख दाते गुर के बजन जपे हर जाप।

कहो नानक ऊचो ऊचा बलावल महला पंजवा बिन हर कामना आव कहे जा सो राच माज तुम लागे मोह मोहनी मोहावत हे रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिने मह जावत हे उर जरे इंद्री रस प्रेरे हो बिखे ठगोरी कावत हे तिरण को मंदर साज सवार हो पावक तले जरावत हे ऐसे गढ़ में ऐठ हठीलो फूल फूल क्या पावत हे पंच दूत मोड पर ठाडे केस गए फेरावत हे दिटन आवे अंध अज्ञानी सोए रहो मद मावत हे जाल पसार चोग बिस्तारी पंखी जूफा हावत हे कहो नानक बंधन काटन कहो मैं सतगुर पुरख ते आवत हे बिलावल महला पंजवा हार घर नाम अपार अमोली प्राण प्यारो मने अधारो चीत चितवो जैसे पान तंबोली रखाओ सहज समायो गुरे बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रेम मुख लागो जोवड़ पागो सुहाग हमारो कतो ना डोली रूप ना तूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मोली कहो नानक प्रेरवि सुहागन आतनी की मेरी बनी खटोली बिलावल महला पंजवा गोविंद गोविंद गोविंद मई जब ते पेटे साध दयारा तब ते दुरमत दूर पई रखाओ पूर्ण पूरे हो संपूर्ण तीतल सांत दयाल दई काम क्रोध न अहंकारा संते हुए सगल खई सत संतोख दया धर्म सुच संतन ते यो मंत लई कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन को सगली सोझ पई।

पर पावे एकत सुनत सदा संघरे रहाओ। काज भ्याजन कंचन छाडन बैरी संग हेत साजन त्याग करे। होमन कौरा अनहोमन मीठा दिखिया मैं लपटाए जरे। अंध कूप मैं परे हो प्राणी परम गुबार मुँह बंद परे। कहो नानक प्रभुत दयारा गुर पीटे काढ़े वहां भरे। बिलावल महला पंजवा मन तरसना हर चीना पै आनंदा मिटे अंदेसे।

चरण गहे आमन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपो होए पजो जगदीसै इहो पदार्थ वड भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रदाते निर्मल जस नानक दास कहे बिलावल महला पंजवां सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ कही ना पहुंचे सुलही होए मुआ ना पाक रखाओ काड कुठार खसम सिर काटिया खिन में होए गया है खाक मंदा चितवत चितवत पचया जिन रचिया तिन दीना ताक पुत्र मीत तन किशु न रहो तो छोड़ गया सा पाई साक कहो नानक तिस प्रभ बलिहारी जिन जनका कीनो पूर्ण वाक बलावल मोहला पनवा पूरे गुर की पूरी सेव।

मेरे को वड प्रताप पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर वस कीने जिन सगले जंत चरण कमल नानक शरणाई आराम नाम जप निर्मल मंत्र।

या गुण तेरे सार संहारी सास सास प्रभ तुम्हें चितारी कृपा निध प्रभ दीन दयाला जी जंत की करो प्रतपाला आठ पैर तेरा नाम जन जापे नानक प्रीत लाई प्रभ आपे बिलावल मोहल्ला पंजवां तन तन जोबन चलत गया आराम नाम का भजन ना कीनो करत विकार निसपोर भया रहाओ अंग प्रकार भोजन नित खाते।

गोविंद गुरु मेरे, मुझे अपराधी शरण चरण रखाओ। जो जो कीनो सो तुम जानेओ, पेखे उठाओ नाही कछ तीठ मुकरण। बड़ प्रताप सुनो प्रभु तुमरो, ओट अगा तेरो नाम हरन। हमरो सहाओ सदा सदा फूलन, तुमरो बिरद पतत उधरन। तरणा मैं कृपाल कृपा निध, जीवन पद नानक हर दर्शन।

दूत धुट सब होए खया। गुण अवगुण प्रकश ना बिचारियो, कर कृपा अपना कर लया। अतुल बड़ाई अचुत अबनासी, नान पुचरे घर की जया। बिलावल मोहल्ला पनवा, बिन पय भगती तरन कैसे। करो अनुग्रह पथ उदाहरण, राग स्वामी आप भरोसे रघाव। सिमर नहीं आवत फिरत मदमावत, दिखया राता स्वान जैसे। औद बिहावत अदक मुहावत, पाप कुमावत बुढ़े ऐसे। सरण दुख पंजन पुरख नरंजन, साधु संगत रमन जैसे। केशव कलेस नास अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे। राग बिलावल महला पंजवा, दो पदे हर नामा। एक ओंकार सदगुर प्रसाद, आपे मेल लय। जब ते शरण तुम्हारी आए, तब ते दुख गए रहाओ। तज अवमान अरचिंत बैरानी, साधे शरण पय। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम, तांते रोग खय। महामुख अजान अज्ञानी, रखे तार दये। कहो नानक गुरपुरा फेट्यो, आमन जान रहे। बिलावल मोहल्ला पंजवां, जीवो नाम सुनी। जो सो प्रसन्न पय गुरपुरे, ता मेरी आस पुन्नी रखाओ। पीर गई बंदी मन तीरा, मुयो अंध तुनी। उबजो चाओ मिलन प्राप्रीतम, रहे ना जाए खिनी। अनक भगत अनक जन तारे, तिमरे अनक मुनि। अंध ले टेक नेर थन थन पायो, प्रभ नानक अनक गुणी। राग बिलावल महला पंजवां, कर तेरवां पड़ताल।

आप ना बूझे लोक बजावे, मन का अंधा अंध कमावे, तार कर महल ठौर कैसे पावे। हर जियो सेव गे अंतर जामी, कट कट अंतर इसकी जोत समानी, तिस नाल क्या चले पैनामी। साचा नाम साचे शब्द जाने, आपे आप मिले चूके अभमाने। गुरमुख नाम सदा सदा वखाने, सदगुर सेवे दूजी दुरमत जाई। औगुण काट पापा मत खाई, कंचन काया ज्योति ज्योत समाई। सदगुर मिले वड्डी वडियाई, दुख काट हिरदय नाम साई। नाम रते सदा सुख पाई, गुरमत मान्या करनी सार, गुरमत मान्या मुख द्वार। नानक गुरमत मान्या परवार है साधार। बिलावल महला चौथा, अष्टपदियां कार ग्यारवां, एक ओंकार। सदगुर प्रसाद आपे आप खाए हो मेटे, आन दिन हरस गीत गवैया। गुरमुख परचय कंचन काया, निरपो ज्योति ज्योत मिलैया। मैं हर हर नाम आधार रमैया, खेन पल रह न सको बिन नावे। गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रखाओ, एक गृह द्वार है जाके। अहे निस तस्कर पांच चोर लगैया, धर्म अर्थ सब हिर ले जावे। मानमुख अंधले खबर न पैया, कंचन कोट बहुमानक भरिया। जागे ज्ञान तत् लिवलैया, तस्कर हेरू आए लोकाने। गुर के शब्द पकड़ बंद पैया, हर हर नाम पोत भोयता। खेवट शब्द गुर पार लंघैया, जम जागाती नेड़ न आवे। ना को तस्कर चोर लगैया, हर गुण गावे सदा दिन राती। मैं हर सहते अंत न लहैया, गुरमुख मनवा इकत कर आवे। मिलो गोपाल निशान बजैया, नैनी देख दर्श मन तृप्त। धर्म बाणी गुर शब्द सुनैया, सुन सुन आत्म देव है पीने। रस रस राम गोपाल रवैया, त्रै गुण माया मोहे व्यापे। तुरिया गुण है गुरमुख लहैया, एक दृट सब सम कर जाने। नदरी आवे सब ब्रह्म पसरैया, राम नाम है ज्योत सबाई। गुरमुख आपे अलख लखैया, नानक दीन दयाल पय है। भगत पाए हर नाम समैया, बिलावल महला चौथा। हर हर नाम शीतल जल प्याव हो, हर चंदन वास सुगंध गंधैया। मिल सत्संगत परम पद पाया, मैं हिरड पलास संघ हर भुइया। जप जगन्नाथ जगदीश गुसैया, शरण परे से जन उभरे। ज्यो प्रहलाद उधार समैया रखाओ, पार अठारे मैं चंदन उत्तम। चंदन निकट सब चंदन हुईया, सागत कूड़े ऊब सुख हुए। मन अभमान विछड़ दूर गईया, हर गत मित करता आपे जाने। साबित हर घर आप बनैया, जिस सदगुर पेटे तो कंचन होवे। जो तो लिखिया सो मिटे ना मिटैया, रतन पदार्थ गुरमत पावे। सागर भगत पंडार खुलैया, गुर चरणे एक सरदा उबजी। मैं हर गुण कहते तृप्त ना पैया, परम वैराग नित नित हर त्याय। मैं हर गुण कहते पाम नहीं कैया, बार बार खिन खिन पल कहिए। आर पार ना पावे परे परैया, शास्त्र वेद पुराण पुकारे। धर्म करो खट कर्म दरड़ैया, मन मुख पाखंड परम विगूते। लोभ लहर नाव पार बुढ़ैया, नाम जपो नामे गल पाओ। सिमरत शास्त्र नाम दरड़ैया, होमे जाय तन निर्मल होवे। गुरमुख परचे परम पद पैया, इहो जग वर्ण रूप सब तेरा। जित लावे से कर्म कमैया, नानक जंतव जाए वाजे। जित फावे ते तराहे चलैया, बिलावल मोहला चौथा। गुरमुख अगम अगोचर त्याया, हौ बल बल सदगुर सदपुरखैया। राम नाम मेरे प्राण मसाए, सदगुर परस हर नाम समैया। जन कीटे हर नाम टकैया, सदगुर की तर लागा जाव। गुर कृपा ते हर दर लहैया रखाओ, यो शरीर कर्म की धरती। गुरमुख मत मत तत् कढ़ैया, लाल जवे हर नाम परगासिया। पांडे पाओ पवे तिद अइया, दासन दास दास होई रहिए। योजन राम भगत निज पैया।
मन बुद्ध अर्प धरो गुर आगे गुर प्रसादी मैं आकाथ कथैया मन मुख माया मोहे आपे इव मंत्रिशना जल तखैया गुरमत नाम अमृत जल पाया अगन बुझी गुर शब्द बुझैया इव मन नाचे सदगुर आगे अनगल शब्द तुन तूर बजैया हर उस्त करे दिन राती रख रख चरण हर ताल पूरैया हर की रंग रता मन गावे रस रसाल रस शब्द रवैया निज करतार चुए अत निर्मल जिन पिया तिनही सुख लैया मन हर कर्म करे अभमानी जो बालक बालू कर उसरैया आवे लहर सुमंद सागर की खिन मैं भिन्न भिन्न टह पैया हर सर सागर हर है आपे यो जग है सब खेल खेलैया ज्यो जल तरंग जल जले समावे नानक आपे आप रमैया बिलावल महला चौथा सतगुर परचे मन मुंदरा पाई गुर का शब्द तन पसम दरड़ैया अमर पिंड पै साधु संग जन्म मरण दो मिट गईया मेरे मन साध संगत मिल रहैया कृपा करो मसूदन माधो मैं खिन खिन साधु चरण पखैया रखाओ तजे ग्रस्त पया बनवासी एकन मनुआ टिके ना टकैया धावत ताए तदे कर आवे हर घर साधु शरण पवैया तिया पूत छोड़ सन्यासी आसा आस मन बहुत करैया आसा आस करे नहीं बूझे गुर कै शब्द नराज सुख लैया उबजी तर्क दिगंबर हुआ मन दह दिस चल चल गमन करैया पर पवन करे बूझे नहीं तृष्णा मिल संग साथ दया कर लैया आसन सिद्ध सिखे बहु तेरे मन मांगे रिद सिद्ध चेटक चेटकैया तृप्त संतोख मन सांतन आवे मिर साधु तृप्त हर नाम सिद्ध पैया पंडज जेरज सेत उत्खुज तवर्ण रूप जीजंत उपैया साधु शरण परे सो उबरे खत्री ब्राह्मण सूद वैस चंडाल चंडैया नामा जय दियो कंबीर त्रिलोचन औ जात रविदास चमियार चमैया जो जो मिले साधु जन संगत तन थना जट सैन मिलया हर दैया संत जना की हर पैज रखाई भगत

तो देखे हौ लोड़ पोड़ होए पैया रहाओ, हौ निरखत फिरो सब देह दिसंतर, मैं प्र देखन को बहुत मन चैया, मन तन काढ़ दियो गुर आगे, जे हर प्र मार्ग पंथ दिखैया, कोई आण सुंदे सादे प्र केरा, जित अंतर मन तन मीठ लगैया, मस्तक काढ़ दियो चरणा तल, जो हर प्र मेले मेल मिलैया, चाल चल सगी हम प्र प्रबुद्ध, गुण कामण कर हर प्रभ लैया, भगत वत्सल उआ को नाम कहित है, तरण प्रभु तिस पाछे पैया, खिमा सीगार करे प्रा खुशियां, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया, रस रस पो करे प्रा मेरा, हम तिस आगे जियो कट कट पैया, हार हार हार कंठ गए बनया, मन मोती चूर वड़ गहन गहनैया, हर घर श्रद्धा से वशाई, प्रा छोड़ न सके बहुत मन पैया, तय प्रभ आवर आवर किस कीजे, ता बाद सीगार फोकट फोकटैया, कियो सीगार मिलन कहताई, प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया, हम तेरी तू अगमुख साई, क्या हम करे तेरे बस पैया, दया दीन करो रख लेवो, नानक हर गुर शरण समैया, बिलावल मोहल्ला चौथा, मैं मन तन प्रेम अगम ठाकुर का, खिन खिन श्रद्धा मन बहुत उठैया, गुर देखे श्रद्धा मन पूरी, क्यों चातरक प्रयो प्रयो बूंद मुख पैया, मेल मिल सखी हर कथा सुनैया, सतगुर दया करे प्रा मेले, मैं तिस आगे सिर कट कट पैया रहाओ, रोम रोम मन तन एक बेदन, मैं प्र देखे बिन नींद ना पैया, वैदक नाटक देख पोलाने, मैं हिरदे मन तन प्रेम पीर लगैया, हाउ खिन पाल रहे ना सको बिन प्रीतम, ज्यो बिन अमल अमली मर गईया, जिन को प्यास होए प्रभ केरी, तिन अवर न पावे बिन हर को दुईया, कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावे, हाउ तस विट्टो बाल बाल कुम गईया, अनेक जन्म के बिछड़े जन मेले, जा सत सत सतगुरु शरण पवैया, सेज एक एको प्रभ ठाकुर, महल न पावे मन मुख परमैया, गुर गुर करत शरण जी आवे, प्रभ आए मिले कन टील न पैया, तार कर क्रिया चार बधाए, मन पाखंड कर्म कपट लू भैया, बेसवा कह कर बेटा जन्मया, पिता ताए क्या नाम सवैया, पूर्व जन्म भगत कर आए, गुर हर घर भगत जमैया, भगत भगत करते घर पाया, जा हर घर हर घर नाम समैया, प्रभ आन आन मेहंदी पीसाई, आपे कोल कोल अंग लैया, जिन को ठाकुर कृपा थारी, बाह पकर नानक कड़ लैया, राग बिलावल महला पंजवा, अष्टपदी कर बारवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उपमा जातना कही मेरे प्रभ की, उपमा जातना कही तज आन शरण गही रखाओ, प्रभ चरण कमल अपार, हौ जाओ सद बलिहार, मन प्रीत लागी ताहे, तज आन कते ना जाहे, हर नाम रसना कहन, मल पाप कलमल दहन, चढ़ नाव संत उधार।

तुन मोहे अनहत बैन, हर सरण सूर गोपाल, प्रा भगत वस दयाल, हर निगम लह ना पेव, निर करे मुनजन सेव, दुख दीन दर्द निवार, जाकी मां बिखड़ी कार, ताकी मित ना जा।

नानका नाम ते आए। दीनानाथ दयाल मेरे स्वामी, दीनानाथ दयाल जाचो संतरवाल रखाओ। संसार विखिया कूप तम अज्ञान मोहत कूप, गय पूजा प्रभ जी ले हो। हर नाम अपना देहो, प्रभ तुझ बिना नहीं चाहो। नानका बल बल जाओ, लोभ मोह बादी देह, बिन भजन होवत खेहे। जमदूत महा पयान, चित गुप्त कर मैं जान। दिन रैन सार सुनाए, नानका हर शरणाए। पय पंजना मुरार, कर दया पतत उधार। मेरे दोख गने ना जाहे, हर बिना कते समाहे। गय ओट चितवी नाथ, नानका दे रख हाथ। हर गुण दे गोपाल, सर्व कड़ प्रतपाल। मन प्री दर्शन प्यास, गोविंद पूर्ण आस। एक निमख रहन ना जाए, वड़भाग नानक पाए। प्रभ तुझ बिना नहीं होर, मन प्रीत चंद चकोर। जो मीन जल सुवेत, आल कमल पिन ना पेत। जो चकवी सूरज आस, नानक चरण प्यास। जो तरन परत परान, जो लोभिये तन दान। जो दूध जले संजोग, जो मां खुदिया रस भोग। जो माद पूते हेत, हर सिमर नानक नेत। ज्यो दीप पतन पतंग, ज्यो चोर हिरत निसंग। मै गलै कामे बंद, ज्यो ग्रस्त बखई तंद। ज्यो जुआर बिसन ना जाए, हर नानक इहो मन लाए। कुरंक ना देने हो, चातरक चाहत में हो। जन जीवना सत्संग, गोविंद भजना रंग। रसना बखाने नाम, नानक दर्शन दान। गुण गाए सुन लिख दे, तो सर्व फल हर ले। उल समूह करत उधार, संसार उतरस पार। हर चरण भोजित ताहे, मिल साध संग जस गाहे। हर पैज रखे मुरार, हर नानक

तू सर्व व्यापी, तुम समसर नहीं दयाल, मोहे समसर पापी ही बलावल, नेत उठ कोरी गागर आन, लीप्त जियो गयो, ताना बाना कछु ना सूजे, हार हार रस लपटेयो, हमारे कुल कौने राम कहो, जब की माला लई निपूते, तब ते सुख ना पयो रखाओ, सुनो जिठानी सुनो दरानी, अचरज एक पयो, सात सूत इन मुंडगे खोए, क्यों मुंडिया क्यों नाम होयो, सर्व सुखा का एक कर स्वामी, तो गुरु राम दयो, संत प्रहलाद की पैज न राखी, हर नाश नख बिदरेओ, करके देव किदर की छोड़ी, गुर को शब्द लयो, कहेत कबीर सगल पाप खंडन, संत है लय उधरेओ, बिलावल को हर समान नहीं राजा, ए पूबत सब दिस चार के, झूठे करत दिवाजा रखाओ, तेरो जन होए सोए कद डोले, तीन पवन प्रसाजा, हाथ पसार सके को जन को, बोल सके ना अंदाजा, ए

आए जन्म जन्म के किल बिक गए, रम तराम जन्म मरण निवार, उच्च तराम पै पार उतार, सब ते ऊंच राम।

लूट लेहे सागत पद खोवे सात जना पग मल मलत होवे पांच पूत जने एक माए ओत पुज खेल कर जगत विहाए तीन गुणा के संग रच रसे इनको छोड़

पूर्ण मंत हर तन खाट किए पंडार मिर सतगुर सब काज सवार हर के नाम रंग संग जागा हर चरणी नानक मन लागा गुंड मोहल्ला पंजवा असागर भोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरण हर गुण रमत नाही जम पंथ मां विचार पंच दूत मंथ तौ शरण आई पूर्ण नाथ।

नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन बस अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गही गोंड मोहल्ला पंजवां जा को राखे राखनहार इसका अंग करे निरंकार रहाओ माद गर्भ में अगना जोहे

मन महा आनंद, संत जपे गुर दियो भगवंत, संगत के मुख उज्जल पए, सगल थान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाहे, पार ब्रह्म गुर बे परवाहे।

अहंकारी जन पर माने निंदक वेकारी गुर कै सिख सदगुरु ते आया जन उबरे निंदक नरक पाया सुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरतै घर द्वारे जैसा करे सो तैसा पाए अवमानी की जड़ सर पर जाए नी तरिया सतगुर तर तेरी करके पारा खोजन केरी कहो नानक तिस गुर बलिहारी जा के सिमरन पैज सवारी राग गोंड बाणी भगता की कबीर जी तार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत मिले के सुनिए कही है मिले असंत मस्त कर रही है बाबा बोलना क्या कही है जैसे राम नाम रब रही है रखाओ संतन स्यों बोले उपकारी मूर्ख स्यों बोले।

करना गुरमुख होए बौर नहीं मरना गोंड कूटन सोए जो मन को कूटे मन कूटे तो जमते छूटे कोट कोट मन कसवटी लावे तो कूटन मुक्त भव पावे कूटन किसे कहो संसार अगल बोलन के माहे विचार रहाओ नाचन सोए जो मन सो नाचे झूठ न पतिये पर चै साचे इस मन आगे पूरे ताल इस नाचन के मन रखवाल बजारी सो जो बजार है सोध पांच पलीते को प्रबोध नौ नायक की भगत पछाने सो बाजारी हम गुरमाने तस्कर सोए जे तात न करे इंद्री के जतन नाम उच्चरे कौ कबीर हम ऐसे लखन तन गुरदेव अतरूप चखन गुण तन गोपाल तन गुरदेव तन अनाद भूखे कवल टैकेव तन ओ संत जिन ऐसी जानी तिन को मिलबो सारंग पानी आद पुरख ते हुए अनाद।

जैसे गाय का बाछा शूटला, थान चोखता माखन कूटला, नाम दियो नारायण पाया, गुर पीड़त अलख लखाया, जैसे बिखे हिद परनारी, ऐसे नामे प्रीत मुरारी, जैसे तापते निर्मल कामा, तैसे राम नामा।

कोई नाम जपे जप माली लागे तिसे ध्याना अभी कभी किशु न जाना तेरा एको ना पछाना ना जाना हरे मेरी कमन गते हां मूर्ख अज्ञान शरण प्रा तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रखाओ तहू जीड़ा उब चढ़त है कभू जाए पयाले लोभी जीड़ा थिरना रहत है चारे कुंडा पाले मरण लखाए मंड

ओ मैं मान कलाला, तुम देव होते संक न मान हो, हम पुंचे सदा निहाला। हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देव हो खीरा, हम खिल है सब लाड लडाव है, तुम स गुणी गहीरा। तुम पूर्ण पूरे है संपूर्ण, हम पी संग अघाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहया, नानक कहन न जाए। राम कली महला पनवा, कर कर ताल पखाव ज नयन हो, माथे वजे रबाबा, करनो मद बांसुरी बाजे, जेवा तुन आगाजा, नृत करे कर मनुआ नाचे, आने कुगर साजा। राम को नृतकारी, पेखे पेखन हार दयाला, जेता सासी गारी रखाओ। आखार मंडली तरण सबाई, ऊपर गगन चिंदोआ, पनम चूला करत अकेला, जल ते उपत हुआ। पंच तत कर पुत्रा कीना, किरत मिलावा हुआ। चंद सूरज दु जरे चिरागा, चौ कुंड पीतर राखे, दस पातो पंच संगीता, एक पीतर साते। पिन पिन हुए पाद दिखावे, सभो निरारी पाखे, तार कर नृत होवे दिन राती, हड़कड़ वाजे तूरा। एक नचावे एक पवावे, एक आए जाए हुए तूरा, कहो नानक

भय परया जप नाथ दिन रहनाई तेरी खिंता दो दिहाई रहाओ गहरी बिपूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी मांगे टूका तृप्त न पावे नाद छोड़ जाचे लाज न आवे क्याल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजे नित उदासेरा गुर गुर कीते बूझ न पाई फिर जोगी आवे जाई जिसन हुआ नाथ किरपाला रह रास हमारी गुर गोपाला नामे खिंता नामे बस्तर जन नानक जोगी हुआ अस्थिर क्यों जपया नाथ दिन रहनाई हुन पाया गुर गोसाई रहाओ दूजा राम कली महला पंजवां करन करा मनसोई आना दिसे कोई ठाकुर मेरा सूड सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना ऐसो रे घर समीठा गुरमुख किने विरले डीठा रहाओ निर्मल जोत अमृत नाम पीत अमर पय ने काम तन मन शीतल अग्नि निवारी अंध रूप प्रगटे संसारी क्या देवो जा सब कुछ तेरा सब बलिहार जाओ लख बेरा तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच निवाजिया खोल किवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया कहो नानक सब पड़दा टूटा हौ तेरा तू मैं मन मूठा राम करी महला पंजवा सेवक लायो अपनी सेव अमृत नाम दियो मुख देव सगली चिंता आप निवारी जिस गुर कहो सद बलिहारी ताज मारे पूरे

सब छलै, हर हर नाम संग तेरा चलै, आराम नाम गुण गाए ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत

सगल पवित्र सर्व निर्मला जो वरताए सोई पला जय राखे सोई मुक्त स्थान जो ज पाए सोई नाम। अड़सठ तीर्थ जय साध भगत धर है तह बैकुंठ जय नाम उच्चर है सर्व आनंद जब दर्शन पाईए राम गुणा नित नित घर गाएगे आपे करकड़ रहा बेआप दयाल पुरख प्रगट प्रताप कपट खुराने राम नाठे दूरे नानक गौगुर पेटे पूरे राम कली महला पंजवा कोट जापता विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनक रूप रंग भोग रस गुरमुख नाम निमख हृदय बस हर के नाम की वड्याई कीमत कहन न जाई रखाव तोर वीर तीर्ज मद पूरा।

माया मोहया टेढ़ हो जात अभागे तय लाज नाही सुख सागर पूर्ण परमेश्वर हर ना चेत्यो मन माही रखाओ अमृत कौरा बिखिया मीठी सागत की बेद नयन हो डीठी ऊड़ कपट अहंकारी जाना नाम सुनत जन बिशु डसाना माया कारण सदगी चू है मान मुख कवे न उस्तत करे निरपो निरंकार दातार तिसु प्रीत न करे गवार सब सहा सिर साचा साहो वे मोहताज पूरा पात साहो मोह मगन लपट्यो परम गिरह

आनंद न होवी सोग, कहू न व्यापे हो मैं रोग। खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिस्मन बिस्म पए बिस्मादा, परम गद पावे हर सिमर प्राणी ही रखाओ। गण मन देखो सगल विचार, ना बिना को सके ना तार, सगल उपावन चल है संग, पवजल तरिगे प्रभ के रंग, देही तोय न उतरै मैल, होमे व्यापे दुबदा फैल। हर हर औखद जो जन खाए, ताका रोग सगल मिट जाए,

मेरा प्रभ पूर्ण परमेश्वर स्वामी कड़का रहता मेरा प्रभ रहाओ ताकी गई मन ओट बंधन ते होई चोट हृदय जप परमानंद मन माहे पय आनंद तारण तरण हर सरण जीवन रूप हर चरण संतन के प्राण आधार ऊचे ते ऊच अपार सुमत सार जित हर सिमरी जे कर कृपा जिया पे दीजे सुख सहज आनंद हरनाओ नानक जपया गुर मिलनाओ राम कली मुहल्ला पंजवा सगल सियान पछाड़ कर सेवा सेवक साज अपना आप सगल मिटाए मन चिंदे से ही फल पाए हो सावधान अपने गुर स्यों आसा मनसा पूर्ण होवे पावे सगल।

ताहु रोग सोग परमीजा, ताहु पवन तार जात बेगाए, संत बेगावे कीर्तन गाए, ताहु बेगावे दिन रैन चाल, ताहु बेगावे सो पिड़माल, ताहु बेगावे बाल पढ़ावत, संत बेगावे हर्ष गावत, ताहु बेगावे नट नाटक निर

दया तारी तन धारण हार बंधन ते होई छुटकार अवथान देखे नैन अलोय जिबन दूजा अवर न कोय प्रम पे छूटे गुर प्रसाद नानक पेख्यो सब समात राम कली महला पंजवा जी जंत सब पेखिए प्रसगल कुमारी तारना यो मन हर के नाम पधार।

नित नित मंगल सुनिए। राम कली मोहल्ला पंजवा, हर हर ताए मना खिन नाम सारिये। राम रामा राम रमा कंठ उतारिये, उतार हर हर पुरख पूर्ण पार ब्रह्म निरंजनो। भय दूर करता पाप हरता, दुसे दुख पाव खंडनो। जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिये। बिनवंत नानक मिल संग साधु, दिन सरैन चितारिये। चरण कमल आधार जन का आसरा, माल मिल्ख पंडार नाम अनंत तरा। नाम नरहर निदान जिनके, रस भोग एक नारायणा। रस रूप रंग अनंत बीठल, सास सास त्याणा। केल खरना ना पुन चरणा, ना जमकी त्रास हरा। बिनवंत नानक राह जन की, चरण कमल है आसरा। गुण बेंत स्वामी तेरे कोई ना जाने, देख चलत दयाल सुन भगत वखानई। जी जंत सब तो इतिहावे, पुरख पद परमेश्वरा। सर्व जाचक एक दाता, करना में जगदीशरा। साधु संत सुजान सोई, जिसे प्रभु जी मानई। बिनवंत नानक करो कृपा, सोए तुझे पछानई। मोए निर्गुण अनाथ सरणी आया, बाल बाल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया। गुरु नाम दिया कुशल थिया, सर इच्छा पुनिया। जल ने बुझाई सांते आई, मिले त्रिव शून्या। आनंद हरख सहज साते, महामंगल गुण गाया। बिनवंत नानक नाम प्रभ का, गुर पूरे ते पाया। राम कली मोहल्ला पंजवा, रुण चुनो शब्द अनाहद। नेत उठ गाये संतन के, केल विसा दुख मिनासन। हर नाम जपिये गुरु मंत्र के, हर नाम लीजे अम्यो पीजे। रैन दिस आराधिये, योग दान अनेक क्रिया। लग चरण कमले साधिये, पाओ भगत दयाल मोहन। दुख सगले पर हरे, बिनवंत नानक तरे सागर। त्याए स्वामी नर हरे, सुख सागर गोविंद सिमरन। भगत गावे गुण तेरे राम, अंत मंगल गुर चरणी लागे। पाए सुख नेरे राम, सुख निदान मिलया दुख हरिया। कृपा कर प्रवराखिया, हर चरण लागा परम पौ भागा। हर नाम रसना पाखिया, हर एक चितवे प्रभ एक गावे। हर एक दृष्टि आया, बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा। पूरा सतगुर पाया, मिल रही गे प्रभ साध जना। मिलगा कीर्तन सुनिए राम, दयाल प्रभु दामोदर माधो। अंत न पाएगे गुनिए राम, दयाल दुख हर शरण दाता। सगल दुख निवारण, मोह सो विकार बिखड़े। जब

खिन मैं मुए जा शब्द पछाने हस्त रचीत मरन मन माने गुर कृपा ते ना पछाने गगन गंभीर गगन अंतरवास गुण गावे सुख सहज निवास गया न आवे आए न जाए गुर प्रसाद रह लिवलाए गगन अगम अनाथ अजोनी अस्थिर चीत समाज सगोनी हर नाम चेत फिर पवे ना जूनी गुरमत सार होर नाम बिहूनी कर दर फिरता की बो तेरे जात असंख अंत नहीं मेरे केते माग पिता सो तिया केते गुर चिले फुन हुआ काचे गुर ते मुक्त न हुआ केती नारवार एक समाल गुरमुख मरण जीवन प्रवनार दैज टूंड करे मैं पाया मेल पया सदगुरु मिलाया गुरमुख गावे गुरमुख बोले गुरमुख तोल तलावे तोले गुरमुख आवे जाए न संग पर हर मय जलाए कलंक गुरमुख नाद वेद विचार गुरमुख मज्जन चज अचार गुरमुख शब्द अमृत है सार नानक गुरमुख पावे पार चंचल चीत न रही ठाए चोरी मिर्ग अंगूरी खाए चरण कम उतारे चीत चिर जीवन चेतन नित नीत चिंत ही दिसे सब कोय चित एक तई सुख होय चित बसे राते हर नाए मुक्त पया पस्यो कर जाए छीजे दे खुले एक गंड छिया ने देखो जग हंड तूप शाप जे सम कर जाने बंधन काट मुक्त कर आने छाया शूची जगत पोलाना लिखिया किरत तुरे परवाना चीजे जोबन जरुआ सिरकाल काया चीजे पई से बाल जापे आप प्रभु त्योलो जुग जुग दाता अवर न कोय ज्यो पावे त्यो राखे राख जा जाचो देवे पदसाख जागत जाग रखा तू पावा जा तू मिले ता तुझे सुमावा जय जयकार जपो जगदीश गुरमत मिल गए बीस इक्कीस जग बोलन कह जसवात तूर मरे देखे परमात जन्म हुए नी जीवन आसा आए चले पे आस नरासा चोर चोर चख माटी रल जाए काल ना चंपे हर गुन गाए पाई नवनद हर कै नाए आपे देवे सहज सुपाए यानो बोले आपे बूझे आपे समझे आपे सूझे गुर का कहया अंक समावे निर्मल सूचे सा चो पावे गुर सागर रतनी नहीं तोट लाल पदार्थ सात अखोट गुर कहया साकार कमावो गुर की करणी का हे तावो नानक गुरमत साज समावो टूटे नेहो के बोले सही टूटे बहा दूध गई टूट प्रीत गई बुर बोल दुर्मत परखर छी टोल टूटे गंठ पड़े विचार गुर शब्दी कर कार्य सार लहा साच न आवे तोटा तिर पवन ठाकुर प्रीत मोटा ठाको मनुआ राखो ठाए ठैक मुई अगुण पछताए ठाकुर एक सबाई नार बहुते बेस करे कूड़ियार पर कर जाती ठाक रखाई मैल बुलाई ठाक न पाई सब सुवारी साच प्यारी साई सुहागन ठाकुर तारी डोलत डोलत हे सभी फाटे तीर सी गार डापन तन सुख नहीं बिन डर बिन ठी डार डरब मुई करे अपने डीठी कंत सुजान डर आख्या गुर अपने निरपो नाम खान डूगर वाल तिखा कणी जब देखा नहीं दूर तिखा निवारी शब्द मन अमृत पिया पारपूर देहे देह आखे सो कोई जय पावे तय दे गुरु द्वारे देवसी तिखा निवारे सोए टंडोलत टूणत हो फिरी टह टे पवन करार पारे टहते टह पे हौले निकसे पार अमर अजाती हर मिले तिन कहे हो बल जाओ तिन की तूड़ अकुली है संगत मेल मिलाओ मन दिया गुरे अपने पाया निर्मल नाओ जिन नाम दिया तिस सेवस तिस बलिहारे जाओ जो असारे सो टासी जिमन अवर न कोए गुर प्रसादी तिस समला ता तन दुख न होए हणा को मेरा किस गही हणा को हुआ न होग आमन जान में गुचिए दुधा व्यापे रोग ना विहुने आदमी कलर कंध गिरंत विण नावे क्यों छूटिए जायर सातल अंत गणत गणावे अखरी अगणत साचा सोए अज्ञानी मत हीन है गुरबिन ज्ञान न होए टूटी तंत्र बाब की वाजे नहीं विजोग बिछड़िया मेले प्रभु नानक कर संजोग तरवर काया पंख मान तरवर पंखी पंच तत चुगे मिल एक से तिनको फास नारंच उड़े ता बेगुल बेगुले ताके चोकणी पंख तुटे पाही पड़ी
آگن پیڑ بنی بن ساچے کیوں چھوٹیے ہر گن کرم منی آ شڑا اے چھوٹیے وڈا آپ تنی گر پرسادی چھوٹیے کرپا آپ کرے اپنے ہاتھ وڈائیاں

मन जा गोटी सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम समाल कवन सो गुप्ता कवन सो मुक्ता कवन सो अंतर बार जुगता कवन सो आवे कवन सो जाए कवन सो तिरफुन रहा समाए घट घट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बार शब्द सो जुगता मन मुख बिन से आवे जाए नानक गुरमुख सा समाए क्यों कर बादा सरपन खद क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा क्यों तत् विचार ऐसो गुरु हमारा दुर्मत बादा सरपन खद मानमुख खोया गुरमुख लादा सतगुर मिले अंधेरा जाए नानक हो में मेड़।

दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाणे अंतर कमल प्रगास्थिया जीवित मरे ता सब कुछ सूझे अंतर जाने सर्वदया नानक ताको मिले वडाई आप पछाणे सर्व जिया सच उपजे सच समावे साचे सूचे एक मया झूठे आवे ठवर ना पावे दूजे आवा गौण पया आवा गौण मिटे गुर शब्दी आपे परखे बगसलया एका बेदन दूजे व्यापी नाम रसायन विसरया तो बुझे जिस आप बुझाए गुर कै सबसो मुक्त पया नानक तारे तारण हारा होमे दूजा पर हरिया मनमुख फूले जमकी कान पर कर जो है हाने हान मनमुख परम पवे बेबान वे मार्ग मूस मंत्र मसान शब्द ना चीने लवे कुबान नानक साचर ते सुख जान गुरमुख साचे का पौ पावे गुरमुख बाणी अगड़ कढ़ावे गुरमुख निर्मल हर गुण गावे गुरमुख पवित्र परम पद पावे गुरमुख रोम रोम हर त्यावे नानक गुरमुख सास समावे गुरमुख परचे वेद विचारी गुरमुख परचे तरिये तारी गुरमुख परचे सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचे अंतर विद जानी गुरमुख पाइये अलख अपार नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथे विचार गुरमुख निभगे सब परवार गुरमुख जपिये अंतर प्यार गुरमुख पाइये शब्द अचार शब्द भेद जाने जानाई नानक होमे जाल समाई गुरमुख धरती साचे साजी इसमें ओपत खपत सो बाजी गुर के शब्द रपे रंग लाए साजर तो पास्यों कर जाए साज शब्द बेन पत नहीं पावे नानक बिन नावे क्यों साच समावे गुरमुख अष्ट सिद्धि सा बुद्धि गुरमुख पवजल तरगे सच सुधि गुरमुख सार अवसर विद जाने गुरमुख परविरत निर्विरत पछाणे गुरमुख तारे पार उतारे नानक गुरमुख शब्द निस्तारे नामे राते होमे जाए नाम रते सच रहे समाए नाम रते

तू सच्ची नाई। श्लोक कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोए, राम कसौटी सो सह, जो मर्जी वा होए मोहल्ला तीजा। क्यों कर यो मन मारिए, क्यों कर मृतक होए, कया शब्द न मानई, होमे छड़े न कोए, गुर प्रसादी होमे छुटे, जीवन मुक्त सो होए। नानक जिसनु बख्से तिस मिले, तिस बिघन ना लागे कोई महला तीजा। जीवत मरना सब को कहे, जीवन मुक्त क्यों होए, पय का संजम जे करे, दारू पाओ लाए, अनदन गुण गावे सुख सहजे, बिघ पवजल नाम तरे, नानक गुरमुख पाईए, जा को नदर करे पौड़ी, दूजा पावर चायोन, त्रै गुण वरतारा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन।

मैं सतगुर देहो देखाल, हाँ ते देवा मन अपना, नित हिरदे रखा समाल। एकस सतगुर बहारा, दृग जीवन संसार, जन नानक सतगुर तिना मिलायोन, जिन सद ही वरतै नाल महला पंजवा। मेरे अंतर लोचा मिलन की, क्यों पावा प्रतोहे, कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो, जो मिले प्रीतम मोहे। गुरपूरे मेल आया, जत देखा तत सोए, जन नानक सो प्रासेवया, तिस जेवड़ अवर न कोए पौड़ी। देवनहार दा तार, तित मुख सालाही है, जिस रखे कृपा तार, रिक समाही है। कोए न किस ही वस, सबना एक तार, पाले बालक वांद, दे के आप कार। करदा अनंद बिनोद, किशु ना जानिए, सर्व तार समरथ, हाँ तिस कुरबाणिए। गाइए रात दिनंत,

सुंदर बचन तुम सुनो शबीली, फिर तेड़ा मन साधारण, दुर्जन से तीन हो रचायो, दस विखा मैं कारण, ऊनी नाही चूनी नाही, नाही किसे विहूनी, फिर शहर शपीला छड गवायो, दुर्मल कर्म विहूनी, ना हो फुली ना हो चुकी, ना मैं नाही दूसा, जित हो लाई तित हो लगी, तू सुन सच संदेशा, साई सुहागण साई भागण, जय फिर कृपा तारी, फिर अवगुण के सब गवाए, गल से ती लाए सवारी, कर्महीन तन करे बेनंती, कद नानक आवे वारी, सब सुहागण माणे रलियां, एक देव रात मुरारी, महला पंजवा, ताही मन तू डोलता, हर मनसा पूर्ण हार, सतगुर पुरख ते आए तू, सब दुख वसारण हार, हर नामा आराधमान, सब किल विख जाए विकार, जिन को पूर्व लिखिया

मन तन हिरदे सिमर हर आड़ पैर गुण गाओ उपदेश सुनो तुम गुर सिखो सच्चा ए सुआओ जन पदार्थ सबर होए मन में लायो पाओ सूग सहज आनंद कणा प्रभ जपत्या दुख जाए नानक नाम जपत सुख उपजे।

फेर फिराहर सतगुर संग दिखाया जाहर जन नानक सच्चे सच समाहर महला पंजवां आहार सब करदा फिरे आहार एक ना होए नानक जित आहार जग उधर है विरला बूझे कोई पौड़ी वड्डियों वड्डा अपार।

काया कलालन लहान मेलो गुर का सदगुण कीन रे। इसना काम क्रोध मद मस्तर काड काड कसदी न रे। कोई है रे संत तय सुख अंतर जा को जब तब देव दलाली रे। एक

ऐसो दान नित नित है कीजे, आत्म जो निर्मायल कीजे, आप बराबर कंचन दीजे, राम नाम सर तऊ ना पूजे, मने न कीजे रोस, जमे न दीजे दोस, निर्मल निर्वाण पद कीन लीजे, जस रस राय नंद, राजा मेरा राम चंद, परम में नामा तत् रस अमृत पीजे, राम कली बाणी सर्वदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपो पाव न दर्शे, लोहा कंचन हिरन हुए कैसे, जो पार सह न परसे, देव संसे गांठ न छूटे, काम क्रोध माया मद मस्तर, इन पंचो मिल लूटे रघा, हम बड कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एवद कभे ना नासी, कौरव दास सबे नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे, मुए आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे, राम कली बाणी बेणी जियो की, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, इड़ा पिंगला और सुखमना, तीन बसे इकठाई, बेणी संगम तय प्राग, मन मज्जन करे तताई, संतो तहां नरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोई, तहां नरंजन रमैया होए रघाओ, देव स्थाने क्या निशानी, ते बाजे शब्द अनाहद बाणी, ते चंदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी, उपजे ज्ञान दुर्मत शीजे, अमृत रस गगन अंतर पीजे, इस कला जो जाने पेओ, पेटे ताश परम गुरुदेव, दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की काटी, ऊपर हाट हाट पर आला, आले पीतर धाती, जागत रहे सो कभू ना सोवे, तीन तिलोक समाध पलोवे, बीज मंत्र ले हृदय रहे, मनुआ उल्ट सुन में गह, जागत रहे ना अलिया पाखे, पांचों इंद्री बस

पच्छम फेर चढ़ावे सूर, अजर जरै सो निजर चरै, जग नास्यो गोष्ट करै, चौमुख दीवा जोत द्वार, पलु अंत मूल विचकार, सर्व कला ले आपे रहे, मन मानक रत्ना मैं गोह, मस्तक पद्म द्वार ले मणि, महे निरंजन तिर पवन तनी, पंच शब्द निर्मायल बाजे, तुल के चावर संख कण गाजे, दल मलदे तो गुरमुख ज्ञान, बेणी जाते तेरा नाम, राग नट नारायण महला चौथा, एक ओंकार सत नाम, तरता पुरख निरपौ निरवैर।

स्वामी तुम दुष्ट तारे हरण के नट मोहल्ला चौथा मेरे मान जप हर घर राम रंगे हर घर कृपा करी जगदीशर हर त्यायो जन पग लगे रगाओ जन्म जन्म के पूर चूक हम अबाए प्रसरण अगे तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी हमरा को वड़ पावक के तुमरी संगत हर को ना उधरे प्रकीय पतत पवगे।

पावन पावन पित्र सब कीए, जे तूर परी जन पगे, तुमरे गुण प्रव कह न सके हम, तुम वड वड पुरख वडगे, जन नानको दया प्रवतार हो, हम सेवो तुम जन पगे। नट मोहल्ला चौथा। मेरे मान जप हर हर नाम मने, जगन्नाथ कृपा प्रतारी, मत गुरमत नाम बने रघाओ, हर जन हर जस हर हर गायो, उपदेश गुरु गुर सुने, केल भग पाप नाम हर काटे, जिव खेत किसान लुने। तुमरी उपमा तुम ही प्रव जान हो, हम कह न सके हर गुने, जैसे तुम तैसे प्रव तुम ही, गुण जानो प्रभ अपने। माया फास बंद बो बंदे, हर जप्यो खुल खुलने, ज्यो जल कुंचर तनुवे बंदेओ, हर चेत्यो मोख मुखने। स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम खोजो जुग जुग ने, तुमरी था पाई नहीं पावे, जन नानक के प्रवड ने। नट मोहल्ला चौथा। मेरे मन कल कीर्त हर प्रवणे, हर हर दयाल दया प्रतारी, लग सतगुर हर जपने रगाओ, हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी, सब त्यावे हर उड़ने, जिनको तुमरे वड कटाख है, ते गुरमुख हर सिमरने। ए प्रपंच किया प्रस्वामी, साब जग जीवन जुगने, ज्यो सलल है सरल उठे बहुलहरी, मिल सलल है सलल समणे। जो प्रो किया सो तुम ही जान हो, हम न जानी घर गहने, हम बार्क कहो विद पुस्त तारो, हम करे प्रभु सिमरणे। तुम जलनिध हर मान सरोवर,

साधु पुरख साध जन पाए, एक बिनो करो गुर प्यारे, राम नाम तन पूंजी देवो सब तृष्णा पूख निवारे। पते पतंग मृग प्रिंग कुंचर मीन, एक इंद्री पकर संघारे, पंच पूत सब लगे देही और सतगुर पाप निवारे। शास्त्र वेद सोध सोध देखे, मुन नारद बचन पुकारे, राम नाम पढ़ो गद पावो सत संगत गुर निहतारे। प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निहारे, मेर सुमेर मोर बो नाचे, जब उनमें कान कन हारे। सागत को अमृत बो सिंचो, सब डाल फूल विस्कारे, ज्यों ज्यों निवे

रे मन टहल हर सुखसार, अवर टहलां झूठियां निर करे जम सिर मार रखाओ। जिन्ना मस्तक लिखिया ते मिले संगार, संसार पौ जल तारिया हर संत पुरख अपार। नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह बेकार, सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार। एक परम फूले सागता बिन गुर अंध अंधार, तुर हो ना सो होया को ना मेटन हार। अगम रूप गोविंद का अनक नाम अपार, तन तन ते जन नानका जिन हर नामा उरतार। माली गौड़ा महला पंजवा राम नाम को नमस्कार, जास जबत होवत उधार। रहाओ जाके सिमरन मिटे तंद, जाके सिमरन छूटे बंद, जाके सिमरन मूर्ख चतर, जाके सिमरन कुले उधर, जाके सिमरन पौ दुख हरे, जाके सिमरन अबदा टरे, जाके सिमरन मुजद पाप, जाके सिमरन नहीं संताप, जाके सिमरन हृदय विगास, जाके सिमरन कवलादास, जाके सिमरन निध निदान, जाके सिमरन तरे निदान। पतत पावन नाम हरि, ओड भगत उधार करी, हर दास दासा दीन शरण, नानक माथा संत चरण। माली गौड़ा मोहल्ला पंजवा ऐसो सहाई हर को नाम, साध संगत परिपूर्ण काम रखाओ। बूढ़ को जैसे बेड़ी मिलत, बूझत दीवक मिलत तिलत, जलत अग्नि मिलत नी।

सब नगरी में एको राजा सबे पवित्र रह थावा बाबा देवसा सच गावा जाते सहजे सहज समावा रगाव बुरा पला किस आपस ते जाने ए सगल विकारा यो फरमाया खजम का हुआ वरत यो संसारा इंद्री तात सबल कहियत है इंद्री किसते हुई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लेवलागी दुबदा तदे बेनासी जुत पाना सो सतकर मानिया काटी जमकी फासी पंत नानक लेखा मांगे कवना या चूके मन अवमाना।

आद हर घर भगत परे पंडारा गुरमुख राम करे निस्तारा जिसनु कृपा करे मेरा स्वामी सो हर के गुण गावे जियो हर घर कृपा करे बनवाली हर हृदय सदा सदा सुमाली हर घर नाम जपो मेरे जीवड़े जप हर घर नाम छिड़ावे जियो रखाओ सुख सागर अमृत हर नाओ मंगत जन जाचे हर देव पसाओ हर सत सत सदा हर सत हर सत मेरे मन पावे जियो नवे शिदर सर्वे अपवित्रा बोल हर नाम पवित्र सब किता जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी हर सिमरत मल ले जावे जियो माया मोह बिखम है पारी क्यों तरगे दुत्तर संसारी सतगुर बोध दे प्रस

असाध रोग उपजो तन पीतर करत न काहू टारियो प्रा बिसत मह दुख पायो यो नानक तत विचारियो मारू महला पंजवा चरण कम प्रवरा खे चीत हर गुण गावे नीता नीत इस बिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रहाओ जाके वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार नानक गए उस

निकुट न कब हो जाए, पाया अमोल पदार्थ टोड़ न कत हो जाए, हो नानक सुख पाया तृप्त रहे आगाए। मारू महल्ला पंजवां, फूटो आंडा परम का मने पयो परगास, काटी बेरी पगे ते गुर की नी बंद खलास। आमन जान रहे हो तब तक कड़ाहा बुझ गया, गुर शीतल नाम दियो रघाव। जब ते साधु संग पया तो छोड़ गए निगहार, जिसकी अटक तिसे ते छुटी तो कहाँ करे कोटवार। चूका पारा कर्म का होए ने कर्मा, सागर ते कंडे चढ़े गुर कीने तरमा। सच थान सच बैठका सच स्वाव बनाया, सच पूंजी सच वखरो नानक कर पाया। मारू महला पंजवां, वेद पुकारे मुगते पंडित का मामन का माठा,

अलापे मन नहीं हर हर गावा, हरख सोग लोभ मोह रहत है, निर्मल हर के संता, तिनकी तूड़ पाए मन मेरा, या दया करे भगवंता, कहो नानक गुर पूरा मिले, ता उतरी मन की चिंता, मेरा अंतर जामी हर राया, सब के जाने मेरे जी का प्रीतम, बिसर गए बक बाया, रहाओ दूजा, मारू महला पंजवा, कोट लाख सर्व कोरा।

सिमरो एक नरंजन सो जाते बिरता जात न को। मात गर्भ में जिन प्रद पारिया जियो पिंड दे सास वारिया। तोई बधाता खिन खिन जपी है जिस सिमरत अवगुण सब टकी है। चरण कमल उर अंतर धारहो बिखिया बनते जियो उधारहो। करण पला मिटे बिल लाटा जब गोविंद परम पौ फाटा। साध संग विरला को पाए नानक ताके बल बल जाए। आराम नाम मन तन आधारा जो सिमरे तिसका निस्तारा रहाओ। मितया वस्त सत कर मानी हित लायो सठ मूड अज्ञानी।

माया माध मन तन संग जाता तृष्णना बूझे करत कलोला ऊनी आस मिथ्या सा बोला आवत अकेला जात अकेला हम तुम संग झूठे सा बोला पाए ठगौरी आप भुलायो नानक कीर्तन जाए मिटायो पस पंखी भूत अर प्रेता बहुबद जोनी फिरत अनेता जय जानू तय रहन न पावे थान बिहून उठ उठ फिर तावे मन तन वासना बहुत विस्तारा अहं मेव मूठो बेचारा अनक दोह अर बहुत सजाई ताकि कीमत कहन न जाई।

दीनानाथ जगत पित माया प्रभ दयाल दुख दर्द बिदारण जिस पावे तिस ही निस्तारण अंध कूब ते काढ़न हारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन धारिया महा अगन ते आप उबारिया जब तब संजम इस ते किश नाही आद अंत प्रभ अगम अगाही।

करियो। एक नाम त्याई नानक दीन नाम मांग है, दुतिया परम चुकाई मारू महला पंजवा। मेरा ठाकुर अद पारा

पूर्ण तृप्त अगाए सहज समास पाए हर भंडार हाथ आया नानक गुरते पाया मारू महला पंजवां कार सेवा दो पदे एक।

तिसै बूझ जिन तू किया प्रव करण कारण एक रखाओ चेत मन में तस्यानप जोड़ सगले पेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू महला पंजवा पत पावन नाम जाको अनाथ को है नाथ महापौजल माहे तुलहो जाको लिखियो माथ।

माया कीमत जन्म सरायो, आराम भजन नहीं लागे ओ रखाओ। जम को डांड परे उसरी ऊपर, तब सोवत तय जागे हो, ता हो आपके पछताए, झूठ तो नाहन पागे हो। ए चिंता उपजी घट मैं, जब गुर चरणन अनरागे हो, सोफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभु जस मैं पागे हो। मारू अष्टपदिया महला पहला, कार पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद वेद पुराण कथे सुने, हारे मुनि अनेका अड़सठ तीस बौ कणा, प्रम था के पेखा, साचो साहिब निर्मलो।

ना बिना को कछ नहीं, गुरपूरे पूरी मत कीन रहाओ। अवगुण सुबर गुण नहीं, बिन गुण क्यों कर जाओ। सहज सब सुख उपजे, बिन भागा तन नाहे। जिनके नाम ना मन बसे, से बादे दुख सहाहे। जिन्हीं नाम सारिया, ते किताए संसार। आगे पासे सुख नहीं, गाडे लादे शार। विछड़िया मेला नहीं, तू कणु जमद्वार। अगे क्या जाना नाहे, मैं भूले तू समझाए। भूले मार्ग जो

पवथ की गुर पिर मेलम दितम मिलाए अरहाओ। सूफी नानी मासियां देर जिठानड़िया आवन मंजन ना रहन पूर परे पैया मामे तय मां माणिया भाए बाप ना माओ साध लड़े तिन लाठिया पीड़ कणी दरियाओ सचो रंग रंगावलो सखी हमारो कंत सच विछोड़ा ना थिए सो सो रंग रवंत सबे रुती चंगिया जित सचे सो ने हो सातन कंत पछाणिया सुख सुती निस डेह पतन कूके पातनी वन्यों त्रुक विलाड़ पार पवंदड़े डिठ मैं सदगुर बोहित चाड़ हिक नी लद्या हिक लद गए हिक पारे पर नाल जिन्नी सच वन जया से सच्चे प्रव नाल ना हम चंगे आखिए बुरा न दिसता कोए नानक होमे मारिए सच्चे जेड़ा सोए मारू महला पहला ना जाना मूर्ख है कोई ना जाना स्याणा सदा साहिब के रंगे राता अन दिन नाम खाना बाबा मूर्ख हां नावे बल जाओ तू करता तू दाना बीना तेरे नाम तराओ रहाओ। मूर्ख स्याणा एक है एक जोत दोए नाओ मूर्खा सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही नाओ गुरुद्वारे ना उपाइए बिन सतगुर पल्ले ना पाए सतगुर के भाणे मन वसे ता आए निसरहे लिवलाए। अराजं रंगं रूपं मालं जो बनते जुवारी हुक्मी बादे पासे खेले चौपड़ एका सारी जग चतर सियाणा परम पुलाणा नाओ पंडित पढ़े गावारी नाओ सारे वेद समाल है बिद पूले लेखारी कलर खेती तरवर कंठे बागा पहरे कजल चरे यो संसार से की कोठी जो पैसे सो गर्भ जर रई तराजे कां सबाए दो अंतर सो जासी कहत नानक गुर सच्चे की पौड़ी रहसी अलख निवासी। मारू महला तीजा कार पंजवा अष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिसनु प्रेम मन वसाए साचे शब्द सहज सुभाए एहा वेदन सोई जाने अवर के जाने कारी जियो आपे मिले आ मिलाए अपना प्यारे आपे लाए प्रेम की सार सोई जाने जिसनु नदर तुम्हारी जियो रहाओ। देव दृष्ट जागे परम चुकाए गुर प्रसाद परम पद पाए तो जोगी ए जुगत पछाणे गुर के शब्द विचारी जियो संजोगी तन पर मेला होवे गुरमत विचों दुरमत खोवे रंग स्यो निदरलिया माणे अपने कंत प्यारी जियो सतगुर बाजो वैद न कोई आपे आप निरंजन सोई सतगुर मिले मरे मंदा होवे ज्ञान विचारी जियो इहो शब्द सारस नू लाए गुरमुख तिसना भुख गवाए आपन लिया किशु न पाइए कर कृपा कल धारी जियो आगम निगम सदगुरु दिखाया कर कृपा अपने कर आया अंजन माहे निरंजन जाता जिन को नदर तुम्हारी जियो गुरमुख होवे सो तद पाए अपना आप विचों गवाए सतगुर बाजो सब तंद कमावे वेखो मन विचारी जियो एक परम फूले फिरे अहंकारी एक ना गुरमुख होमे मारी सच्चे सदरते बैरागी होर परम फूले गावारी जियो गुरमुख जिन्नी नाम न पाया मनमुख बिरता जन्म गवाया अगे विण नावे को बेली नाही पूजे गुर विचारी जियो अमृत नाम सदा।

बेणी संगम आठसठ अंक समाई हे। आपे सिद्ध साधक विचारी आपे राजन पंचाकारी तख्त बहे अदली।

आपे बख्श लए सुख पाए, पूरे शब्द मिलाई है। दुर्मत झूठी बुरी बुरियार, औगुणियारी औगुणियार, कच्ची मत फीका मुख बोले, दुर्मत नाम न पाई है। औगुणियारी कंत न पावे, मन की झूठी झूठ कमावे, फिर का साओ न जाने मूर्ख, बिन गुर बूझ न पाई है। दुर्मत खोटी खोट कमावे, सीगार करे फिर खसम न पावे, गुणवंती सदा फिर रावे, सदगुरु मेल मिलाई है। आपे हुम करे सा विख है, एक ना बख्श लए तुर लिख है, अन दिन नाम रते सद पाया, आपे मेल मिलाई है। हौमे तात मोहरस लाई, गुरमुख लिव साची सह सुमाई, आपे मिल है आपे कर विख है, बिन सदगुर बूझ न पाई है। एक शब्द विचार सदा जन जागे, एक माया मोहे सोए रहे अपागे, आपे करे कराए आपे, होर करना किशु न जाई है। काल मार गुर शब्द निवारे, हर का नाम रखे उरतारे, सदगुर सेवा ते सुख पाया, हर के नाम समाई है। दूजे पाए फिरे देवानी, माया मोहे दुख माए समानी, बहुते पेख करे नहीं पाए, बिन सदगुरु सुख ना पाई है।

कंचन काया गुरमुख बूझे जिस अंतर नाम निवासी है। सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम पूजन सच आधारा। सदा त्रिवत पवित्र है पावन जित कड़ हर नाम निवासी है। हों तिन बलिहारी जो साचे लागे हर गुण गावे अनदिन जागे। साचा सुख सदा तिन अंतर रसना हर रस रासी है। हर नाम चेता।

माया मोह शब्द जलाया, सच मनवसिया जातव पाया, सच्चे की सर सच्ची करनी, हो में तिखा निवारी हे। माया मोह सब आपे कीना, गुरमुख विरले किन ही चीना, गुरमुख होवे सो सच कमावे, सची करनी सारी हे। कार कमाई जो मेरे प्रापाई, होमे तिशना शब्द बुझाई, गुरमत सदगी अंतर शीतल, होमे मारने वारी हे। सच लगे तिन सब कुछ पावे, सच्चे शब्दे सच सुहावे, ऐथे साचे से दर साचे, नदरी नदर सवारी हे। बिन साचे जो दूजे लाया, माया मोह दुख सुबाया, बिन गुर दुख सुख जापे नाही, माया मोह दुख भारी हे। साचा सब जिन्हा मन पाया, पूर्व लिखिया तिनी कमाया, सचो सेव है सच त्यावे, सच रते विचारी हे। गुर की सेवा मीठी लागी, अनदिन सुख सह समाधि, हर घर करत्या मन निर्मल हुआ, गुर की सेव प्यारी हे। छे जन सुगे सदगुर सच्चे लाए, आपे पाने आ मिलाए, सदगुर राखे से जन उभरे, और माया मोह खुवारी हे। गुरमुख साचा शब्द पछाता, नाथ कुटुंब नाथ माता, एको एक रविया सब अंतर, सबना जिया का आधारी हे। होमे मेरा दूजा पाया, इचना चले तुर खसम लिख पाया, गुर साचे ते साच कमाव है, साचे दुख निवारी हे। जां तू देह सदा सुख पाए, साचे सबदे साच कमाए, अंदर साचा मन तन साचा, भगत परे भंडारी हे। आपे

गुण में गुणी समाया, ए जग में मोह है पासारा, मानव अज्ञानी अंध अंधारा, तंदे तावत जन्म गवाया, बिन नावे दुख पाया, कर्म होवे ता सतगुर पाए, होमे मैल शब्द जलाए, मान निर्मल क्या रतन चानन, अज्ञान अंधेर गवाया, तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई, सच नाम हर हिरदे विसाई, कीमत कौन करे प्रा तेरी, तू आपे सहज समाया।

जिन का पख करे तू स्वामी तिनकी ऊपर गल तु आनी हे। हर हर नाम जिनी सदा त्याया तिनी गुर प्रसाद परम पद पाया। जिन घर सेवा तिन सो पाया बिन सेवा पशो ताणी हे। तू सब में वरते हर जगन्नाथ सो हर जपे जिस गुरमस्तक हाथ। हर की शरण पया हर जापी जन नानक दा दसाणी हे। मारू सोर हे महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद तला उपाय करी जन तरना। गगन रहाया हुमे चरणा अगन उपाय ईदन मैं बाधी हो प्रा राके भाई हे। जी जंत को रिजक संभाहे करण कारण समरथ आपाहे। खिर मैं थापो थापन हारा तोई तेरा सहाई हे। माद गर्भ में जिन प्रद पालिया सास ग्रह सोय संग समालिया। सदा सा जपगे सो प्रीतम वड्डी जिस वड्याई हे। सुल्तान खान करे खिन कीरे गरीब निवाज करे प्रामीरे। गर्भ निवारण सर्व सधारण किस कीमत कही न जाई हे। सो पतवंता सो धनवंता जिस मन वसया हर भगवंता। माद पिता सुद बंध भाई जिन ए सृष्ट उपाई हे। प्रव्याय सरना पौनी करना साध संगत ने चोहे तरना। मन भज कर्म आराधे करता जिस नाही कदे सजाई हे। गुण निधान मन तन मैं रव्या जन्म मरण की जोन न पव्या। दुख विनाश किया सुख डेरा जहाँ तृप्त रहे आगाही हे। मीत हमारा सोई स्वामी थानत अनंत अंतर जामी। सेवर सिमर पूर्ण परमेश्वर चिंता गणत मिटाई हे। हर का नाम कोट लख बाहा हर से कीर्तन संग तन ताहा। ज्ञान खड़कर कृपा दीना दूत मारे कर ताई हे। हर का जाप जपो जब जपने जीत आभो वसो कर अपने। लग चौरासी नरक न देखो रसक रस गुण गाई हे। खंड ब्रह्मंड उदाहरण हारा ऊच अथा अगम्य पारा। जिसनु कृपा करे प्रभ अपनी तो जन तसे त्याई हे। बंधन तोड़ लिगे प्रामोले कर कृपा कीने कर गोले। अनहद रोण चुनकार सहज तोन साची कार कमाई हे। मन प्रतीत बनी प्रा तेरी बिनस गई होमे मत मेरी। अंगीकार किया प्रभ अपने जग में सोभ सुहाई हे। जय जय कार्ज पो जगदीस बल बल जाई प्रभ अपने ईस। इस बिन दूजा अवर न दीस एका जगत सुबाई हे। सत सत सत प्रभ जाता गुर प्रसाद सदा मन राता। सेमर सेमर जीवे जन तेरे एक अंकार समाई हे। भगत जिना का प्रीतम प्यारा सबे उदाहरण खसम हमारा। सिमर ना पुन्नी सब

जितने नरक से मनमुख भोग गए। गुरमुख लेपना मासा गे, गुरमुख सोए जे हर जियो पाया, जे कौन मिटावे जे प्रभ राया, सदा आनंद करे आनंदी, जे सिर पाओ पया गल खासा गे, हों बलिहारी सतगुर पूरे, शरण के दाते भजन के सूरे, ऐसा प्रा मिलिया सुखदाता, विछड़ न कत ही जासा गे, गुण निधान किस कीम न पाई, घट घट पूर रहे हो सब ठाई, नानक शरण दीन दुख पंजन, हों रेण तेरे जो दासा गे, मारू सोल गे, महला पंजवा, एक ओ अंकार, सदगुर प्रसाद, करे आनंद आनंदी मेरा, कड़ कड़ पूर्ण सिर सिरे नबेरा, सिर सहा के सच्चा साहिब, और नाही को दूजा हे, हरखवंत आनंत दयाला, पलट रहे हो प्रभ सर्व उजाला, रूप करे कर वेखे विकसे, आपे ही आप पूजा हे, आपे कुदरत करे विचारा, आपे ही सच करे पसारा, आपे खेल खिलावे तिन राती, आपे सुन सुन भीजा हे, साचा तख्त सची पातशाही, सच खजीना साचा साही, आपे सत हारे सब साचा, सच्चे सच वर तीजा हे, सच तपावस सच्चे केरा, साचा थान सदा प्रव तेरा, सची कुदरत सची बाणी, सच साहेब सो कीजा हे, एको आप तू है वड़ा राजा, हुक्म सच्चे के पूरे काजा, अंतर बार सब खे जाने, आपे ही आप तीजा हे, तू वड़ रसिया तू वड़ भोगी, तू निर्वाण तू है ही जोगी, सर्व सुख सहज कर तेरे, आम्यो तेरी दृष्टि जागे, तेरी दात तुझे ते होवे, दे दान सबसे जंत लोवे, तोट न आवे पूर पंडारे, तृप्त रहे आखी जागे, जाचे सिर साधक बनवासी, जाचे जति सती सुखवासी, एक दा तार सगल है जाज, दे दान सृष्टि जागे, करे भगत आरंग अपारा, खिन में थाप्यो था पनहारा, पारो तोल बेअंत स्वामी, हुक्म मन भगती जागे, जे दे दर्स सोई तुझ जाने, ओ गुर के शब्द सारंग माने, चदर स्वरूप से आना सोई, जो मन तेरे पावी जागे, जे चीत आवे सो वे परवाह, जे चीत आवे सो सचा साहा, जे चीत आवे तिस पौ केहा, अवर कहां किस की जागे, तिस ना बूझी अंतर ठंडा, गुर पूरे ले टूटा गंडा, सोरत शब्द हृद अंतर जागी, अम्यो चोल चोल पी जागे, मरे नाही साध सदगी जीवे, अमर पया अवनासी थीवे, ना को आवे ना को जावे, गुर दूर किया परमी जागे, पूरे गुर की पूरी बाणी, पूरे लागा पूरे माए सुमाणी, चढ़े स्वाया नित नितरंगा, कटे नाही तो ली जागे, बारहा कंचन शुद्ध कराया, नदर सराब वन्नी सचड़ाया, परख जाने पाया सरापी, फिर नाही ताई जाए, अमृत नाम तुम्हारा स्वामी, नानक दास दा कुर्बानी, संत संग मां सो पाया।

करो दया किरमायणा निर्गुण कौसंग लेर लाए कर कृपा मुहे टहले लाए पखा फेरो पीसो संत आगे चरण तोये सुख पायना बहुत द्वारे प्रम प्रम आया तुमरी कृपा ते तुम शरण आया सदा सदा संते संग रख हो यो नाम दान देवायना पै कृपाल गुसाई मेरे दर्शन पाया सतगुर पूरे सुख सहज सदा आनंदा नानक दास दसायना मारू सोलहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरे धरती अर आकाशा सिमरे चंद सूरज गुण तासा पौन पानी बैसंतर सिमरे सिमरे सगल उपार जना सिमरे खंड दीप सब लोवा सिमरे पाताल पुरिया ससोवा सिमरे खाणी सिमरे बाणी सिमरे सगले हर जना सिमरे ब्रह्मे विष्णु महेसा सिमरे देवते कोड़ ते तीसा सिमरे जख दैंत सब सिमरे अगणत न जाई जस गना सिमरे पशपंखी सा भूता सिमरे बाण पर्वत अवधूता लता बली साग सब सिमरे हरब रया स्वामी सा मना सिमरे थूल सूक्ष्म सब जनता सिमरे सिर साधक हर मंता गोवत प्रगट सिमरे प्रा मेरे सगल पवन का प्रवतना सिमरे नर नारी आसरमा सिमरे जद जोश सा वरना सिमरे गुणी चित्र सा बेते सिमरे रैणी अर देना सिमरे घड़ी मूर्त पल निमखा सिमरे काल अकाल सोच सोचा सिमरे सुन सातर संयोगा अलख न लखिए एक खिना करन करामन गार सुवामी सगल घटा के अंतर जामी कर कृपा जिस भगती लाव जन्म पदार्थ सोजना जाके मन रूठा प्रव्यपना पूरे कर्म गुर का जप जपना सर्व निरंतर सुप्रा जाता बोड़ न जोनी परम रोना गुर का शब्द से मन जाके दुख दर्द प्रमता का पागे सुख सहज आनंद नाम रस आनंद बाणी सहित होना सो तनवंता जिन प्रोत्याया सो पतवंता जिन साध संग पाया पार ब्रह्म जाके मन उठा सो पूर कर्मा नाशिरा जल थल मैयल स्वामी सोई अवर न कही गए दूजा कोई गुर ज्ञान अंजन काट्यो प्रम सगला अवर न दिसे एक बिना ऊचे ते ऊंचा दरबारा तैन न जाई अंत न पारा गैर गंभीर अथा स्वामी अतुल न जाई क्या बिना तू करता तेरा सब किया तुझ बिन अवर न कोई बिया आद मध अंत प्रा तू है सगल पसारा तुम तना जम दूत किस निकट न आवे साध संग हर कीर्तन गावे सगल मनोरथता के पूर्ण जो श्रवणी प्रभ का जस सुना तू सबना का सबको तेरा सच्चे साहिब गैर गंभीरा कहो नानक सेई जन उत्तम जो पावे स्वामी तुम मना मारू महला पंजवा प्रसमरथ सर्व सुख दाना सिमरो नाम हो मेहरबाना हर दाता जी जंत पेखारी जान बांछे जा चंगना मांगो जन तूर परम गद पावो जन्म जन्म की मैल मिटाव दीर्घ रोग मिटे हर औखद हर निर्मल रापे मंगना श्रावणी सुनो बिमल जा स्वामी एका ओट तजो बिख कामी निव निव पाए लगो दास तेरे कर सुकृत ना ही संगना रसना गुण गावे हर तेरे मिटे कुमाते अवगुण मेरे सेमर सेमर स्वामी मन जीवे पांच दूत ताज तंगना चरण कवन जा बोत चरिये संत संग मेरे सागर तरिये अर्चा बंधन हर संत निवासी बौड़ जोनना नंगना दास दासन को कर लिहो गोपाला कृपा निधान दीन दयाला सखा सहाई पूर्ण परमेश्वर मिल कदे न हो भी पंगना मान तन अर्प करी अरागे जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतपालक हत्यागी हो में हंतना जल पूर्ण अंतर जामी खड़का रवे अशल स्वामी परम पीत खोई गुरपूरे एक रवे असर मंगना जद कद पेखो प्रभ सुख सागर हर तोड़ भंडार ना ही रतनागर आगे अगा कश्मित नहीं पाइये तो बूझे जिस किर पंगना जाती शीतल मन त ठंडा जन्म मरण की मिटवी डंजा कर गे काल लिगे प्रवे अपने अम्यो तार धि टंगना एको एक रवैया सब ठाई जिबन दूजा कोई नाही
ਆਦ ਮਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਵਰਵਿਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੂਜੀ ਪਰਮੰਗਨਾ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਸਤਭਗ ਸੰਦ ਗੁਰ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪਤ ਫਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆਨ ਦੀਪਕ ਸੰਤ ਸੰਗਨਾ ਜੋ ਪੇਖਾ ਸੋ ਸਭ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਜੋ ਸੁਨਣਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਨੀ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਤੁਮੇ ਕਰਾਇਓ ਸਰਣ ਸਹਾਈ ਸੰਤ ਹੈ ਤਨਾ ਜਾਤਕ ਜਾਚੇ ਤੁਮੇ ਆਰਾਧੇ ਪਤ ਪਾਵਨ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਏਕੋ ਦਾਨ ਸਰਬ ਸੋ ਗੁਣ ਨਿੰਦ ਆਨ ਮੰਗਰਨ ਹੇ ਕਿੰਚਨਾ ਕਾਇਆ ਪਾਤਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਲੱਗੀ ਲਾਗ ਸੰਤ ਸੰਗਾਰਾ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਬਣੀ ਗਰਬਾਣੀ ਮਨ ਨਾਮ ਜੀਠੇ ਰੰਗਣਾ ਸੋਲ ਹੈ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਿਆ ਅੰਤ ਕਲਾ ਹੋਏ ਠਾਕੁਰ ਚੜਿਆ ਅੰਧ ਬਿਨੋਦ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹਰ ਪੁੰਚਨਾ ਮਾਰੂ ਸੋਲ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸੇਵਕ ਕੀਤਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਦੀਤਾ ਕਰਨ ਕਰਾਮਨ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਹੈ ਨਾਹੀ ਕਿਸ ਅਸਾੜਾ ਤੁਮੇ ਪਠਾਏ ਤਾਂ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਜੋ ਤੂੰ ਪਾਣਾ ਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ

चक्र पाण दर्श अनुपया सहस नेत्र मूर्त गय सहसा एक दाता सब गये मंगा भगत वचल अनाथ नाथे गोपी नाथ सगल गये साथे बादेव नरंजन दाते वर्ण साको गुण अंगा मुकंद मनोहर लक्ष्मी नारायण द्रौपदी लज्जा।

तिनकी तूड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरे नाही काहू बेरा। इनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई। एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार तजाए, ते जन को उपदेश निर्माल का, तुद बिन नाही कोई मेरा। गुर पकड़ाए प्रभु के पैरा, हों बलिहारी सदगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रा बिसरे नाही। आड़ पैर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राते, तू समरथ वडाल का। मारू महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, चरण कमल हिरदे नितारी, गुरपूरा खिन खिन नमस्कारी। तान मन अर्प तरी सब आगे, जग में नाम सुहावना, सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे सास वारे। सास ग्रास समाले, करता कीता अपना पावना, जाते बिरता को नाही। आड़ पैर हर रख मन माही, सास संग पाच अचुत स्वामी, दरगे सोभा पावना। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सह सुख नौ निध। सर्व कल्याण जे मन में चाह है, मेरे साधु स्वामी रावणा। सास सिमरत वेद बखाणी,

कर हीड़े हिक आधार तियो संतन की रेण जित लभी सुखदा तार पौड़ी बिन कर्मा हर जियो ना पाई है बिन सदगुर मनुमा ना लगे धर्म तीरा कल अंदर है यो पापी मूल न तग अय कर करे सो अय कर पाए एक कड़ी मोहत ना लगे चारे जुग में सोदया विण संगत अंकार ना पगे होमे मूल ना छुटई विण साधु सत्संग तिचर था ना पावई जिचर साहिब स्यो मन पंग जिन जान गुरमुख सेवया इस कर दी बाण अपग हर कृपा ते सुख पाया गोर सतगुर चरणी लगे डखणे महला पंजवा लोड़िंदो हब जाए सो मीरा मीरन सिर हठ मजाऊ सोतनी चौदो मुख अलाए महला पंजवा माणकू मोय माओ डिणना तनी अपाग हियाओ मिंजा ठंडड़ा मुखों सच अलाए महला।

कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा, राग मारू बाणी रविदास जीओ की। एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे गरीब निवाज गुसैया मेरा। माथे छदर तरे रखाओ, जाकी शोत जगत को लागे, ता पर तुही ठरे। नीचे ऊच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। नाम देव कबीर तलोचन सदना सैन तरे, तय रविदास सुनो रे संतो, हर जी उते सवे सरे। मारू सुख सागर सुर तर चिंता मान, काम ते बज जाके रे। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, नवृद कर तल ताके, हर घ हर ना जब सरसना, अवर सब शाड बचन रचना रहाओ। नाना ख्यान पुराण वेद वेद, चौतीस अक्षर माघी, व्यास विचार कहो परमार्थ, राम नाम सरनागी। सहज समाद उपात रहत होए, बड़े पाग लिव लागी, कहे रविदास उदास दास मत, जन्म मरण पै भागी। तुखारी संत महला पहला, बारे माहा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद। तू सुन किरत करमा पुरब कमाया, सिर सिर सुख सुखमा देसो तू पल। हार जना तेरी कागत मेरी, हर बिन कड़ी ना जीवा। प्रेबाज दुहेली गोए ना बेली, गुरमुख अमृत पीवा। रचना राज रहे निरंकारी, ब्राह्मण कर्म सुकर्मा। नानक पंथ निहाले सातन, तू सुनया तमरामा। बाबी गा प्रयो बोले कोकल बाणिया, सातन सबरस चोले अंक सुवाणिया। हर अंक सुमाणी जा प्रा पाणी, सा सुहागण नारे। नव कर थाप महल कर ऊचो, निज कर वास मुरारे। सब तेरी तू मेरा प्रीतम, निस बसर रंग रावे। नानक प्रयो प्रोचवे बबीह, कोकल शब्द सुहावे। तू सुन हरस पिन्ने प्रीतम अपने, मन तन रब तरवन्ने। कड़ी ना बिसरे क्यों कड़ी बिसारी, हो बलिहारी हों जीवा गुण गाए। ना कोई मेरा हों किस केरा, हार बिन रहन ना जाए। ओढ़ गई हर चरण निवासे, पाए पवित्र शरीरा। नानक दृष्ट दीर्घ सुख पावे, गुर शब्दी मन तीरा। बसे अमृत तार बूंद सुहावनी, साजिन मेरे सहज सुपाए। हर स्यों प्रीत बनी, हर मंदर आवे जा प्रभावे। तन ऊबी गुण सारी, कर कर कंतर वे सुहागण। हौ क्यों कंत वसारी, उनो कंशाए बरस सुपाए। मन तन प्रेम सुखावे, नानक वरसे अमृत बाणी। कर कृपा कर आवे, चेत बसंत फला पावर सुहावड़े। बन फूले मंज बार, मैं पिर कर बहोड़े। पिर कर नहीं आवे तन क्यों सुख पावे। बिरे ब्रो तन छीजे, कोकल अंब सुहावी बोले। क्यों दुख अंक सहीजे, पावर भवंता फूली डाली। क्यों जीवा मर माए, नानक चेत सहज सुख पावे। जे हर वर कर तन पाए, वैसाख भला साखा वेस करे। तन देखे हर द्वार, आप हो दया करे। कर आओ प्यारे दुत्तर तारे, तुत बिन अड ना मोलो। कीमत कौन करे तुत पावा, देख दिखावे ठोलो। दूर न जाना अंतर माना, हर का महल पछाना। नानक वैसा की प्रपावे, सुरत शब्द मन माना। माहो जेड पला प्रीत क्यों बिसरे, थल तापे सर पार। सातन बिनो करे तन बिनो करेंदी, गुणसारेंदी गुणसारी प्रपावा। साचे महल रहे बैरागी, आवन देता आवा। निमाणी नितानी हर बिन, क्यों पावे सुख मैली। नानक जिड़ जाने थी जैसी।

ए मन मेरिया तू समझ अचेत ए आणिया राम। ए मन मेरिया जट अवगुण गुणी समाणिया राम। बहु साध लुभाणे किरत कमाणे।

सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझाव तुखारी शांत महला चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

तिहाई। हम सतगुर विठो कुमाए, हम पाथर गुरनाव, बिग पौजल तारिये राम। गुरदेव शब्द सुखाए, मैं मूढ़ निस्तारिये राम। हम मूढ़ मुग्ध किश मित नहीं पाई, तू अग

अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी हौ सतगुर कै बलिहारिये। सतगुर आगे सीस पेट देओ जे सतगुर साचे पावे, आपे दया करो प्रदाते नानक अंक समावे। तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध

मार्ग पंथ चले गोर सतगुर संग सिखा प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब होआ खबर पई संसार आए त्रै लोआ देखने आए तीन लोक थुर नर मुनजन सब आया जिन परसिया गोर सतगुरु पूरा तिनके किलबिख नास गवाया जोगी दिगंबर सन्यासी खड़ दर्शन कर गए गोष्ट टोआ प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब हो।

मन बिकसे जो सुत मिल मात गल लावीए रे हम बारक घर पिता प्रा मेरे मुको दियो मती जित घर पावीए रे जो बशरा देख गऊ सुख माने।

माई संत संग जागी प्रेरंग देखे जपती नाम निधानी रहाओ। दर्शन प्यास लोचन तार लागी बिसरी त्यास बडानी अब गुर पायो हुए सहज सुखदायक।

सदगुर प्रसाद बिसरत नाहे मन ते हरी आबे प्रीत महा प्रबल पई आन विखे जरी रघाओ बूंद का त्याग चातरक मीन रहत ना करी गुण गोपाल उच्चा रसना टेव ए परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रचरण कमल रसाल नानक गांठ बांध थरी केदारा महला पनवा प्रीतम वस्त्रित।

संत संग हर चरण बोहित उदरते लय मोर गर्भ कुंट मैं जिने तारियो नहीं बिखे बन मैं होर हर सगत सरन सुमरत।

त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान मिथन मोह दुरंत आसा झूठ सर परमान सत पुरख अकाल।

भोग सुपारी संतो बंजिया नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोल छूट गई संसारी रगाओ ताते लाए तो सच लागे साचे के व्योहारी साचे।

ठिया मटिया संग न कछ ले जाए रखाओ। देरी बैठी मेरी रोवे द्वारे लव संगमाए, मा हट लग सब लोग कुटंब मेल हंस अकेला जाए। वय सुत वय बित वय पुरपाटन बौर न देखे आए। कहे त कबीर आराम की।

रूप रंग रस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालो, प्राणी हर जप जन्म गयो, साच शब्द बिन कहो ना छूड़स, बिरता जन्म पयो रखाओ, तन में काम क्रोध हो ममता, कठिन पीर अद पारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, एन बिद तार तू तारी, बहरे करण अकल पई होची, शब्द सहज नहीं बूझया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध न सूझया, रहे उदास आस निरासा, सहज ध्यान बैरागी, परमत नानक गुरमुख छूड़स, राम नाम लेव लागी, भैरो महला पहला, ढूंढी चाल चरण कर खिसरे।

आकारा काट वद को करे बिचारा। तहत नानक इहो जियो कर्म बंद होई बिन सतगुर पेटे मुक्त न होई। भैरो मोहल्ला तीजा जोगी गृह पंडित पेख तारी। ए सूते अपने अहंकारी माया बदमाता रह आ सोए। जागत रहे ना मूसे कोए रहाओ तो जागे जिस सतगुर मिले। पंच दूत ओ वसगत करे सो जागे जो तत विचारे। आप मरे अवरा नहीं मारे सो जागे

होए, निकर वसे सहज सुभाए, गुरमुख नाम से मन आए, आपे वेखे वेखणहार, नानक नाम रखो उर तार, भैरो महला तीजा, कलयुग में राम नाम उर तार, बिन नावे माथे पावे शार, राम नाम दुलभ है पाई, गुर प्रसाद वसे मन आई रहाओ, राम नाम जन पाले सोए, पूरे गुरते प्राप्त होए, हर का पाणा मन्ने सेजन प्रवान।

सदगुर प्रसाद हर जन संत का कृपा पगलायन गुर शब्दी हर पद सुरत समायन मेरे मान हर पद नाम नारायण हर हर कृपा करे सुखदाता गुरमुख भवजल हर नाम तरायण रखाओ संगत साध मेल हर गायन गुरमती ले राम रसायन गुर साधु अमृत ज्ञान।

अरहो अराम रसायन नित उड पीवो हार हार हार हार सुना कहो अरहाओ कल युग में एक नाम उधार नानक बोले ब्रह्म विचार भैरो महला पंजवा सतगुर सेव सर्व फल पाए जन्म जन्म की मैल मिटाए।

पुरमुख भेद विरला को लहे रहाओ, निकट ना देखे पार ग्रह जाए, दर्द हे रहे मिथ्या कर खाए, पाई ठगौरी हर संग न जाने।

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, ना बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, ना बिना साध सड़गी चूरे, बिन गुरु दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे को कैसो ध्यान,

काम रोग मैगल बस लीना, दृढ़ रोग पच मोए पतंगा, नाद रोग खब गए कोरंगा, जो जो दिसे तो सो रोगी, रोग रहत मेरा सदगुरु जोगी रहाओ। जेवा रोग मीन ग्रस आनो,

सदने प्रंता कीत आवे तां सब रंग माणे, कीत आवे तां चूकी काणे, कीत आवे तां सहज कर पाया, कीत आवे तां सुन समाया, कीत आवे सद कीर्तन करता, मन मानिया

नाम हमारे सगल आचार, नाम हमारे निर्मल व्यवहार, जाक मन वसिया प्रभ एक, सगल जना की हर हर टेक, मन तन नानक हर गुण गाओ, साध संग जे दे वे नाओ, भैरो महला पंजवा, निरतन कहो तुम देवो तना, अनक पाव जाहे निर्मल मना, सगल मनोरथ पूर्ण काम, भगत अपने को देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय, करन करामन गार स्वामी।

मान मूड मुग्ध हुए चतर सो ज्ञान सगल भयान का पौ नसे जन अपने कह हर मन बसे पार ब्रह्म प्रसुख निदान तत ज्ञान हर अमृत नाम हर कृपा संत टहले लाए नानक साधु संग समाए भैरो महला पंजवा संत मंडल में हर मन वसे संत मंडल में दुर्ध सब नसे संत मंडल में निर्मल रीत संत संग हुए एक परीत संत मंडल तहां का नाव पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ संत मंडल में जन्म मरण रहे संत मंडल में जम किशु ना कहे संत संग हुए निर्मल बाणी संत मंडल में नाम खाणी संत मंडल का निचल आसन संत मंडल में पाप विनाशन संत मंडल में निर्मल कथा संत संग हो में दुख नसा संत मंडल का नहीं विनाश संत मंडल में हर गुणतास संत मंडल ठाकुर बिसरा।

ताल पर हरे सदा सखाई हर हर नाम। जे चीत आवे ते सदा सुख होवे, निकट न आवे ताके जाम रखाओ। जब इहो न सो तब किने उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया। आपे मार आप जीवाले, अपने भगत को सदा।

तेरा परवासा सगल त्याव है प्रभु गुणतासा जब जब अंध करे तेरे दासा सिमर नानक साचे गुणतासा भैरो मोहला पंजवा परसम छोडी प्राई निंदा उतर गई सा मन की चिंदा लो मोसव की नो दूर परम वैसनो प्रापे खजूर ऐसो त्यागी विरला कोए हर हर नाम जपे जन सोए रहाओ अंग बुद्ध का छोड़या संग काम क्रोध का उतरिया रंग नाम त्याए हर हर हरे सा जना के संग निस्तरे बैरी मीत होए सम्मान सर्व मैं पूर्ण भगवान प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया कर कृपा जिस राखे आप तोई भगत जपे नाम जाप मन प्रगास

नृत नाट्य सुख नाई बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख सहज आनंद लहो सास पागे वड़पागी गुरमुख हर हर नाम कहो रहाओ। बंधन माल पिता सुध बनता बंधन कर्म तर्म हो करता बंधन काटनहार मन वसे तौ सो पावे निज कर बसे सब जाजक प्राजे मनगार गुण निदान बेंत अपार जिसनु कर्म करे प्रव्यापना हर घर नाम तिने जन जपना गुर अपने आगे अरदास कर कृपा पुरख गुणतास कौ नानक तुमरी शरणाई ज्यों पावे त्यों रखो गुसाई। भैरो महला पंजवां गुरमुख त्यागो दूजा पाओ गुरमुख जप्यो हर का नाओ बिसरी चिंत नाम रंग लागा जन्म जन्म का सोया जागा कार कृपा अपनी सेवा लाए साधु संग सर्व सुख पाए हरहाओ। रोग दोख गुर शब्द निवारे नाम औखद मन पीतर सारे गुर पेड़ मन पया आनंद सर्वन दान नाम भगवंत जन मरण की मिटी जमत्रा।